मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार दिए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर

0: के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में करेला की खेती विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम करेला की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी सफल खेती के लिए जरूरी है सही भूमि का चुनाव। आमतौर पर इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। खेत तैयार करते समय यह देख लें कि उसमें पर्याप्त नमी है कि नहीं। अगर नमी की कमी है तो पलेवा दे करके यह कार्य करें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, फिर बाद की 3-4 जुताइयाँ देसी हल से करनी चाहिए। तत्पश्चात पिछली फसल के अवशेष और खरपतवारों को निकालकर पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा एवं समतल बना लेते हैं। खेत की तैयारी के समय लगभग 250 कुंटल खूब सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देते हैं। इसके अलावा 30 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम डाइअमोनियम फास्फेट और 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति बीघा की दर से आवश्यकता होती है। खेत तैयार करते समय यूरिया की 1/3 मात्रा तथा डाइअमोनियम फास्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग कर देना चाहिए। बची हुई यूरिया की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इसे 2 बार में, पहली मात्रा जब करेला में 3-4 पत्तियां आ जाएं तब तथा दूसरी मात्रा जब उसमें फूल निकल रहे हों तो देना चाहिए। जब खेत अच्छी तरह तैयार हो जाए तब बुआई करनी चाहिए। बुआई के लिए 3 बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 1 तो उन्नतशील किस्म, 2 बीज की सही मात्रा और 3 बुआई का सही तरीका। जहां तक इसके किस्मों की बात है तो पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, कल्याणपुर 12 मासी, अर्का हरित और फैजाबादी करेला इसकी उन्नतशील किस्में हैं। इसके अलावा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से भी संपर्क करके आप अच्छी प्रजातियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर 1 खेत में करेला की बुआई कर रहे हैं तो 1-2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये कि 4-8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत पड़ेगी। तैयार खेत में 2 मीटर की दूरी पर 40-45 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लेते हैं। अब नाली के दोनों तरफ जो मेड़ बनती है उस मेड़ की ढाल पर बीज बोते हैं। लाइनों में बुआई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए तथा बीज की गहराई 2-3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुआई करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि एक स्थान पर 2-3 बीज डाले जाएं। अब बात आती है इस फसल की देखभाल की, और देखभाल में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सिंचाई का। चूँकि यह गर्मी की फसल है अतः खेत में नमी जल्दी उड़ जाती है। इसके लिए प्रत्येक 6-7 दिन के अंतर पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। फसल की प्रारंभिक अवस्था में निकाई गुड़ाई करके उसमें से खरपतवार निकाल देते हैं। इससे खेत में नमी संरक्षित रहती है और पौधा स्वस्थ रहता है। करेला की फसल में कुछ कीड़े एवं बीमारियों का भी प्रकोप होता है, इसको समय रहते नियंत्रित करते रहना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि करेला की खेती करते हैं तो प्रति बीघा लगभग 40 कुंटल, कहने का मतलब ये कि लगभग 150-160 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार इससे मिल जाती है। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर करेला की खेती करनी चाहिए।

खेती की बातें कार्यक्रम में करेला की खेती विषय पर अभी किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। निवेदित हैं भक्ति रचनाएं आराधना के अंतर्गत। ईश्वर की असीम अनुकंपा है इस सृष्टि का निर्माण, जिसमें सामंजस्य है प्रेम और पाती का, दिया और बाती का, जिसका आभूषण है प्रेम, सद्गुण, सद्विचार, करुणा और सौहार्द।

ईश्वर को पाने के लिए पूजा विधि भक्ति विधि की आवश्यकता नहीं, अंतरात्मा की चाह ही काफी है।

राम हमारे जीवन का आधार हैं, राम सृष्टि हैं, सार हैं, राम ओमकार हैं।

आराधना के अंतर्गत आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं। आज इसमें जिन गायक कलाकारों ने अपना स्वर दिया वो थे संजय तलवार, अनुज बिसरिया, अनूप जलोटा और हरिओम शरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा के अंतर्गत बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज हम सुनेंगे इसकी 134वीं कड़ी।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 134वीं कड़ी।

मुझे तो किसानों के हालात की जांच करनी थी। नील के मालिकों के विरुद्ध जो शिकायतें थीं, उनमें कितनी सच्चाई है ये देखना था। इस काम के लिए हजारों किसानों से मिलने की जरूरत थी, किंतु उनके संपर्क में आने से पहले मुझे ये आवश्यक मालूम हुआ कि मैं नील के मालिकों की बात सुन लूं और कमिश्नर से मिल लूं। मैंने दोनों को चिट्ठी लिखी। मालिकों के मंत्री के साथ मेरी जो मुलाकात हुई, उसमें उसने साफ कह दिया कि आपकी गिनती परदेशी में होती है, आपको हमारे और किसानों के बीच दखल नहीं देना चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ कहना हो तो मुझे लिखकर सूचित कीजिए। मैंने मंत्री से नम्रतापूर्वक कहा कि मैं अपने को परदेशी नहीं मानता और किसान चाहें तो उनकी स्थिति की जांच करने का मुझे पूरा अधिकार है। मैं कमिश्नर साहब से मिला। उन्होंने तो धमकाना ही शुरू कर दिया और मुझे सलाह दी कि मैं आगे बढ़े बिना तिरहुत छोड़ दूं। मैंने सारी बातें साथियों को सुनाकर कहा कि संभव है सरकार मुझे जांच करने से रोके और जेल जाने का समय मेरी अपेक्षा से भी पहले आ जाए। अगर गिरफ्तारी होनी ही है तो मुझे मोतिहारी और संभव हो तो बेतिया में गिरफ्तार होना चाहिए और इसके लिए वहां जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहिए। चंपारण तिरहुत विभाग का एक जिला है और

मोतिहारी उसका मुख्य शहर। बेतिया के आसपास राजकुमार शुक्ला का घर था और उसके आसपास की कोठियों के किसान ज्यादा से ज्यादा गरीब थे। राजकुमार शुक्ल को उनकी दशा दिखाने का लोभ था और मुझे अब उसे देखने की इच्छा थी। अतः मैं उसी दिन साथियों को लेकर मोतिहारी के लिए रवाना हो गया। मोतिहारी में गोरख बाबू ने आश्रय दिया और उनका घर धर्मशाला बन गया। हम सब मुश्किल से उसमें समा सकते थे। जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन सुना कि मोतिहारी से कोई 5 मील दूर रहने वाले एक किसान पर अत्याचार किया गया है। मैंने निश्चय किया कि धरणीधर प्रसाद वकील को लेकर मैं दूसरे दिन सवेरे उसे देखने जाऊंगा। सवेरे हाथी पर सवार होकर हम चल पड़े। चंपारण में हाथी का उपयोग लगभग उसी तरह होता है जिस तरह गुजरात में बैलगाड़ियों का। आधे रास्ते पहुंचे होंगे कि इतने में पुलिस सुपरिटेंडेंट का आदमी आ पहुंचा और मुझसे बोला, सुपरिटेंडेंट साहब ने आपको सलाम भेजा है। मैं समझ गया। धरणीधर बाबू से मैंने आगे जाने को कहा। मैं उस जासूस के साथ उसकी भाड़े की गाड़ी में सवार हुआ। उसने मुझे चंपारण छोड़कर चले जाने की नोटिस दी। वो मुझे घर ले गया और मेरी सही मांगी। मैंने जवाब दिया कि मैं चंपारण छोड़ना नहीं चाहता, मुझे तो आगे बढ़ना है और जांच करनी है। निर्वासन की आज्ञा का अनादर करने के लिए मुझे दूसरे ही दिन कोर्ट में हाजिर रहने का सम्मन मिला। मैंने सारी रात जागकर जो पत्र मुझे लिखने थे लिखे और ब्रजकिशोर बाबू को सब प्रकार की आवश्यक सूचनाएं दी। समन की बात एकदम चारों ओर फैल गई। लोग कहते थे कि उस दिन मोतिहारी में जैसा दृश्य देखा गया वैसा पहले कभी न देखा गया था। गोरख बाबू के घर और दफ्तर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सौभाग्य से मैंने अपना सारा काम रात को निपटा लिया था, इसलिए मैं इस भीड़ को संभाल सका। साथियों का मूल्य मुझे पूरा पूरा मालूम हुआ। वे लोगों को संयत रखने में जुट गए। कचहरी में जहां जाता वहां दल के दल मेरे पीछे आ जाते। कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट आदि के साथ भी मेरा एक प्रकार का संबंध स्थापित हो गया। सरकारी नोटिसों वगैरह के खिलाफ कानूनी विरोध करना चाहता तो मैं कर सकता था। इसके बदले मैंने उनकी सब नोटिसों को स्वीकार कर लिया और अधिकारियों के साथ निजी व्यवहार में मिठास से काम लिया। इससे वे समझ गए कि मुझे उनका विरोध नहीं करना है बल्कि उनकी आज्ञा का विनयपूर्वक विरोध करना है। इससे उनमें एक प्रकार की निर्भयता आ गई। मुझे तंग करने के बदले उन्होंने लोगों को काबू में रखने में मेरी और मेरे साथियों की सहायता का प्रसन्नतापूर्वक उपयोग किया। किंतु साथ ही वे समझ गए कि उनकी सत्ता आज से लुप्त हुई। लोग क्षण भर को दंड का भय छोड़कर अपने नए मित्र के प्रेम की सत्ता के अधीन हो गए थे। याद रहे कि चंपारण में मुझे कोई पहचानता नहीं था। किसान वर्ग बिल्कुल अनपढ़ था। चंपारण गंगा के उस पार ठेठ हिमालय की तराई में नेपाल का समीपवर्ती प्रदेश है, अर्थात नई दुनिया है। वहां न कहीं कांग्रेस का नाम सुनाई देता था, न कांग्रेस के कोई सदस्य दिखाई पड़ते थे। जिन्होंने नाम सुना था वे कांग्रेस का नाम लेने में अथवा उसमें सम्मिलित होने से डरते थे। आज कांग्रेस के नाम के बिना कांग्रेस ने और कांग्रेस के सेवकों ने इस प्रदेश में प्रवेश किया और कांग्रेस की दुहाई फिर गई। साथियों के परामर्श करके मैंने निश्चय किया था कि कांग्रेस के नाम से कोई भी काम न किया जाए। हमें नाम से नहीं बल्कि काम से मतलब है। कथनी नहीं करने की जरूरत है।

अभी आप कार्यक्रम गांधी चर्चा के अंतर्गत सुन रहे थे बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन और प्रस्तुति थी अरुण पांडेय की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज की कड़ी के गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर। 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत में सुबह 7:31 पर सुनिएगा विदुषी वसुंधरा कोमकली का गायन। दोपहर 12:45 पर आप सुनेंगे पंडित कृष्णा राम चौधरी व साथियों का शहनाई वादन। और इसी कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनिएगा मनोहर लाल का बांसुरी वादन। स्वास्थ्य पत्रिका यह कार्यक्रम हम लेकर आएंगे रात्रि 10 बजे से। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 से। सुगम संगीत में रात 8 बजे कलाकार होंगे पंडित सीताराम सिंह। और इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगी नेहा चटर्जी। रात्रि 8:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण होगा। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई अन्य बातों के अलावा सुनेंगे डॉक्टर माधवी सिंह का गाया लोकगीत। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण होगा शाम 5:15 पर, जिसमें आकर्षण होंगे आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। एक ही कलाकार यह कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दिन में 2:30 से। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर महिलाएं चर्चा के अलावा सुनेंगी गीत संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज दिन में 1:45 पर और सुबह 9:50 पर कलाकार होंगे धर्मेंद्र प्रसाद। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे से। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जोगा होगा व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित, हम लेकर आएंगे दिन में 11 बजे से।

जानकार का आनंद लीजिएगा। सुबह 10 बजे से मधुरिमा का प्रसारण होगा, सुबह 8:45 से। गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे से आप सुनेंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5 बजे, 6:10 पर शाम 7 बजे और 7:31 पर रसरंग के जरिए। हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 से, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत में सुबह 7:31 पर सुनिएगा विदुषी वसुंधरा कोमकली का गायन। दोपहर 12:45 पर आप सुनेंगे पंडित कृष्णा राम चौधरी व साथियों का शहनाई वादन और रात्रि 10:30 पर मनोहर लाल का बांसुरी वादन। तो ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज रहे हैं, सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लीजिए, एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त, वो जिसके नाम से होती है आपके दिन की शुरुआत।
2: हेलो, मैं पूजा, पहचाना?
3: इस नाम से उसे कोई नहीं जानता, वो बुलाओ जो सब बुलाते हैं।
1: हाँ जी, पूजा और लेकर हाजिर हो गई हूँ आप सबका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। बनारस, आज से 4 साल पहले आपने सुबह 7:45 पर एक धुन सुनी थी,

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: याद आया? जी हाँ, आज पूरे हो गए हैं गुड मॉर्निंग बनारस को 4 साल। बनारस, ये आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है। आप लोगों ने गुड मॉर्निंग बनारस को इतना प्यार दिया, इतना उसको अप्रिशिएट किया कि आज हमारा प्रोग्राम आपका पसंदीदा प्रोग्राम हो गया है। आप इस शो की तारीफ करते हैं, इस शो के जो भी अच्छे पॉइंट्स आपको लगते हैं आप उनके बारे में हमसे शेयर करते हैं पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में, जिसे जानकर सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जो कमियां होती हैं आप हमें बताते हैं, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं और हमें ये अच्छा लगता है कि हमारे प्रोग्राम्स को आप अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह आप हमेशा बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग बनारस सुनते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए और जो कमियां थोड़ी बहुत हमसे हो जाती हैं उन्हें भी हम तक पहुंचाया करिए, ताकि हम उनमें सुधार करके आपको बेहतर से बेहतरीन प्रोग्राम सजा करके सुनवा सकें। सो अभी तो फिलहाल गुड मॉर्निंग बनारस के 4 साल पूरे हो गए हैं, तो ये सॉन्ग तो इसके लिए बजना जरूरी है। आइए सुन लेते हैं।

प्यार से मेरी बात जरूर सुनिएगा। बनारस ये टाइम तो सबका फेवरेट होता है ना? बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी इस वेकेशन का वेट करते हैं, खासकर मम्मियाँ। सही कह रही हूँ ना? क्योंकि यही वो टाइम होता है जब वो अपने मायके जाती हैं, अपने घर, अपने मम्मी के पास, बच्चों के नानी के घर। अच्छा बनारस, कभी सोचा है नानी घर या दादी घर को कभी नाना घर या दादा घर क्यों नहीं कहते हैं? लोन लेना हो, छड़, बालू, गिट्टी, पेंट और इन सब का हिसाब करना हो, और मेहनत करके घर बनाना हो, तो ये आदमी ही करता है। लेकिन घर को घर तो औरत ही बनाती है ना? क्योंकि सिर्फ सीमेंट, बालू, गिट्टी से घर घर नहीं बनता, घर इमोशन से बनता है। अरे भाई, साफ सफाई हो, साथ सजावट हो, सबको जोड़ कर रखना हो या खाना बनाना हो, ये तो भैया औरत ही करती है ना? नहीं तो फिर घर तो बॉयज हॉस्टल ही लगता है। क्यों, सही कहा ना? इसीलिए नानी घर या दादी घर हम कहते हैं। और छुट्टियों में यहाँ जाना माँ के लिए, बच्चों के लिए थेरेपी का काम करता है। नो किचकिच, नो टेंशन, ओनली फ्रीडम ही फ्रीडम। क्या बोलती है बनारस की जनता? सही कहा ना मैंने? दोस्तों, हम 90s किड के लिए ना ये और भी ज्यादा मायने रखता है। आज की जनरेशन की तरह हम भले ही सुपर फास्ट ना हो, लेकिन हमारी अदा ही निराली है। यस यस, आई एम द 90s किड, ओल्ड फनी, पुराने जमाने का, नॉस्टैल्जिक, अभी भी इतिहास में अटका हुआ है हम ऐसे भैया। क्या है ना, हमारे टाइम ना इश्क बड़ा सीधा सा था, शादी सिंपल सी थी, और ब्रेकअप उसके तो पूछो मत। हम ब्रेकअप से हील होने के लिए किसी सिकेशन विकेशन पर नहीं जाते थे, हम करते थे अपने आप को बंद कमरे के अंदर, लगाते थे गुलाम अली साहब की गजलें, और रो रो कर, सुन सुन कर ये सोचते थे कि इस बंदे को क्यों नहीं पता मेरे दिल का हाल। जी हाँ, हम 90s किड का जमाना वो था जहाँ एड्स सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं थे, वो थे एक पूरी दास्तां जो हमारी रोज रोज की लैंग्वेज में थे। 2 मिनट का मतलब मैगी, चॉकलेट मतलब कुछ खास है जिंदगी में, सिगरेट के जैसी दिखने वाली होती थी एक कैंडी, और दोस्ती मतलब फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं भैया। और तो और, समर वेकेशन की कोई भी पार्टी रसना के बिना अधूरी थी। हम 90s के छोटी छोटी खुशियों में भी पार्टी करते थे। हमारे लिए ये जरूरी नहीं था कि हमारी पार्टी कितनी ग्रैंड है, कितनी सारी वैरायटीज खाने को मिल रही है, कितने सारे लोग आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करती थी। हमारे लिए तो मैटर सिर्फ ये करता था कि हमारे जो दोस्त, जिनसे हम हमेशा सुबह शाम खेलते हैं, जिनसे हम हमेशा बातें करते हैं, बस वो हमारे घर आ जाएं, घर पे हम साथ में बैठ करके टीवी पे वीडियो गेम खेलेंगे, उनके साथ खूब सारी गपशप करेंगे, खाएंगे पियेंगे, वो भी अपनी मम्मी के हाथों का बना हुआ। बाजार की चीजें तो बहुत ही कम हम खाते थे। हमारी पार्टी तो वीडियो गेम से शुरू होती थी और हाइड एंड सीक, बर्फ पानी, यही सब खेल करके ओवर भी हो जाती थी। हमारे लिए मोबाइल फोन मतलब डब्बा। जी हाँ, कहाँ ही था उस समय मोबाइल फोन, और जो था भी तो वो हमारे हैंड में कहाँ था। इसलिए इस बड़ी बीमारी से तो हम 90s के किड ना एकदम दूर थे। संडे, संडे याद है आपको? संडे और सैटरडे स्पेशल डेज होते थे हमारे। सैटरडे की रात में अपने दूरदर्शन पर फिल्म देखने के लिए हम 2 घंटे पहले से ही प्रिपरेशन करने लगते थे। जी हाँ, आज की तरह नहीं कि मूवीज के ढेरों चैनल हो और उन पर 2400 घंटे मूवीज आपको देखने को मिल जाए, तो उसका क्रेज कहाँ ही रहेगा। हमारे टाइम में तो सैटरडे और संडे सिर्फ मूवीज आती थी, और उन मूवीज को देखने के लिए हम अपना होमवर्क करके, अपने सारे काम करके ना एकदम फ्री हो जाते थे कि टाइम पे आराम से बैठ करके मूवी का लुत्फ लेंगे, है ना? हमें तो सिर्फ 2 ही दिन मिलते थे मूवी देखने के लिए भैया, सैटरडे और संडे। और वो याद है संडे सुबह 7 बजे की रंगोली, आहा, जिसे देखने के लिए हम सुबह सुबह उठकर रेडी हो जाते थे, नहा धोकर, नाश्ता करके श्री कृष्णा, महाभारत जैसे आइकॉनिक शोज का वेट करते थे। संडे यानी ट्रूली फंडे था हमारे लिए। और वो प्रोग्राम जो छुट्टियों के टाइम स्पेशल आता था, वो याद है आपको? टर्रम टू, टर्रम टू, टर्रम टू। वाओ, यादें ताजा हो गई ना बनारस? सच दोस्तों, टाइम बीत जाने के बाद

0: यू रियलाइज होता है कि वो ही सबसे बेस्ट टाइम था। हमारे लिए समर वेकेशन की अपनी खास वैल्यू है और ये सबकी लाइफ में होनी चाहिए, है ना? हम सबको ये पता होना चाहिए कि हम कितने खास हैं और हम जिस जिंदगी को जी करके आए हैं वो भी खास है, क्योंकि बीता हुआ पल वापस नहीं आता और उसको ये सोच करके भुला देना कि हमने क्या ही किया, ये भी गलत है। जितना हमने किया बहुत किया, कितनों को तो ये भी नसीब नहीं होता। तो भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, जितना भी दिया है, बहुत अच्छा दिया है। बस ये सोचकर जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुशियां मनाते रहिए। आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी FM पर आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी पूजा के साथ। सो बनारस, चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बता देती हूँ आपको कि आज दिन है शुक्रवार का और तारीख है 19 जून। तो अब जानते हैं क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज। बनारस, एक गुड न्यूज है। धर्मनगरी काशी के मुख्य मार्गों पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक लोड को स्थायी रूप से कम करने के लिए प्रशासन ने दो बड़ी एलिवेटेड रोड परियोजनाओं की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा गंगा और वरुणा नदी के समांतर प्रस्तावित इन दोनों परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए शासन ने सकारात्मक रुख अपनाया है। दोनों एलिवेटेड रोड के अलाइनमेंट में आने वाले चिन्हित 53 मौजों और घाटों की रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी की तरफ से जारी आदेश में प्रभावित गांवों की प्रस्तावित भूमि के क्रय विक्रय, सट्टा इकरारनामा, दान पत्र, लैंड यूज में परिवर्तन और सरकारी भूमि के आवंटन पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो गया है। वरुणा नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 से वाराणसी रिंग रोड जोड़ने के लिए 4-लेन वरुणा लिंक कनेक्टर कॉरिडोर का विकास हो रहा है। लंबाई 21.153 किलोमीटर होगी। यह कॉरिडोर सदर और पिंडरा तहसील के कुल 41 गांवों से होकर गुजरेगी, जहां भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। बनारस आध्यात्म, संस्कृति और विरासत की नगरी काशी अब खेल जगत में अपनी ऐतिहासिक पहचान को नए अंदाज में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की तैयारी में है। नगर निगम द्वारा शहर में विकसित किए जाने वाले 10 थीमेटिक पार्कों की योजना के तहत यदि ओलंपियन पार्क का प्रस्ताव साकार होता है तो यह उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा पार्क होगा जो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले काशी के खिलाड़ियों को समर्पित होगा। यह न केवल खेल उपलब्धियों का जीवंत संग्रहालय बनेगा बल्कि देश विदेश से आने वाले खेल प्रेमियों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षक का प्रमुख केंद्र बन सकता है। काशी ने देश को कई ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने ओलंपिक जैसे विश्व के सबसे बड़े खेल मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है। बनारस काशी में भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की ऐतिहासिक रथ यात्रा तथा उससे जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ट्रस्ट श्री जगन्नाथ जी असी काशी के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की है। वर्ष में केवल एक बार आने वाले इस पावन अवसर भक्त भगवान के विशेष सानिध्य का लाभ उठा सकेंगे। महोत्सव का शुभारंभ 29 जून को स्नान पूर्णिमा के दिन होगा। इस दिन सूर्योदय के साथ ही असी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दिव्य महास्नान का अनुष्ठान हो जाएगा शुरू। अनुष्ठान के अगले चरण में 15 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य डोली यात्रा निकाली जाएगी। यह दिव्य यात्रा अस्सी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर खोजवा होते हुए रथ यात्रा क्षेत्र तक पहुंचेगी। इसके अगले दिन यानी 16 जुलाई से 18 जुलाई तक काशी का विश्व प्रसिद्ध भव्य रथ यात्रा मेला आयोजित किया जाएगा। सो बनारस, ये तो बात हो गई क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज, और अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन के इतिहास को। ১৯৮১ में आज ही के दिन भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक चिकित्सक और वैज्ञानिक सुभाष मुखोपाध्याय का निधन हुआ था। सो बनारस, ये तो बात हो गई इतिहास की और अब जानते हैं आज के स्पेशल डे के बारे में। आज है वर्ल्ड एथनिक डे यानी विश्व एथनिक दिवस। हर साल 19 जून को वर्ल्ड एथनिक दिवस मनाया जाता है। विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाना घोषित हुआ। सो बनारस, आज की बात हो गई, बीते कल की बात हो गई और आज के स्पेशल डे के बारे में भी बात हो गई और अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका रहता है आपको इंतजार।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।

0: तो बनारस सिर्फ मंदिरों और घाटों का शहर नहीं है, ये शहर है शब्दों का। और जब भी शब्दों की महफिल सजती है, एक नाम सूरज की तरह चमकता है, पंडित हरि राम द्विवेदी जी, जिन्हें प्यार से बनारस के लोग गुरु जी कहते थे। पंडित जी के बारे में एक बात मशहूर थी, उनकी कलम जितनी पैनी थी, उनका स्वभाव उतना ही सरल। उन्होंने जब भी लिखा, मिट्टी की सौंधी खुशबू को कागज पर उतार दिया। उनकी रचनाएं जैसे नदी प्यासी थी या पास पड़ोस, ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये समाज का आईना है। उन्होंने भोजपुरी को वो सम्मान दिलाया कि लोग उसे गवारों की भाषा नहीं बल्कि संस्कारों की भाषा कहने लगे। उनकी कविताओं में गंगा की लहरों का संगीत भी था और आम आदमी का दर्द भी। उनकी लिखी एक बात जो मुझे हमेशा याद रहती है, शब्द कभी मरते नहीं, वो बस हवाओं में खुल जाते हैं। पंडित जी भले ही आज हमारे बीच सशरीर मौजूद नहीं है, लेकिन दशाश्वमेध की शाम हो या 80 की अड़ी, उनकी लिखी पंक्तियां आज भी किसी न किसी नुक्कड़ पर सुनाई दे ही जाती हैं। उनकी कविताई में वो ताकत थी कि वो एक अनपढ़ मल्लाह और एक बड़े विद्वान दोनों के दिल को एक साथ छू लेती थी। पद्मश्री से सम्मानित पंडित हरि राम द्विवेदी जी ने अपनी पूरी जिंदगी साहित्य को समर्पित कर दी। उन्होंने सिखाया कि अपनी जड़ों से जुड़कर ही आप आसमान छू सकते हैं। आज जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तब पंडित जी जैसे साहित्यकारों की रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारी संस्कृति और भाषा ही हमारी असली पहचान है। तो आज काशी रत्न में अपनी जुबान पर थोड़ा सा भोजपुरी का रस घोलते हैं और याद करते हैं उस महान विभूति को जिन्होंने बनारस को शब्दों का अमर वरदान दिया। दोस्तों, अब बस इतना ही कहना चाहूंगी, पंडित जी की याद में अपने घर की लाइब्रेरी से उनकी कोई एक किताब जरूर निकालिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि साहित्य पढ़ना खुद को जानना है। काशी रत्न में आज के लिए बस इतना ही।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: सो बनारस, मेरे जाने का समय हो गया है, इसलिए डू वेरी वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी फ्राइडे बनारस, गुड मॉर्निंग।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में ठीक 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
2: पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
3: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है।
3: सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य

0: इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को संबोधित किया, कहा किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के 17 जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग्स के जुड़े दो संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में थे बुलंदशहर जिले के दोनों आरोपी। और आज आगरा में आयोजित हो रही है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक, चीन, रूस और ब्राजील सहित 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत डीह के हिंदूखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत की रक्षा के साथ साथ विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे आसपास के जिलों को बेहतर आवागमन सुलभ होगा।
2: अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वह सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, ताराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे।
1: मुख्यमंत्री ने कल ही कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं दे रही है।
2: प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली, पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रक्यूरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए, आपको जो फर्टिलाइजर कॉपरेटिव सोसाइटी में मिलती है अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए, यहाँ पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भर।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। वो अयोध्या नगर निगम की कुल 291 करोड़ रुपए की लागत वाली 245 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश भर के लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। योजना के तहत प्रदेश के लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने

0: भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड UPATS ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े बुलंदशहर जिले से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन पर गैंग के आतंकी नेटवर्क से जुड़कर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में थे। आगरा में आज भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरी SME वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के सहनी नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में MSME के लिए वित्त और तकनीक तक पहुँच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स SME फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और MSME के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आंकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत कल लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए बच्चों का सुपोषित होना बहुत जरूरी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 जून तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस के क्रमिक बढ़ोतरी की भी संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज और कल, जबकि पूर्वी जिलों में आज कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को संबोधित किया। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता।

0: नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के 17 जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े दो संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में थे बुलंदशहर जिले के दोनों आरोपी। और आज आगरा में आयोजित हो रही है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक। चीन, रूस और ब्राजील सहित 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मन में वृत्त करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7:32 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने विदुषी वसुंधरा कोमकली का गायन, राग है रामकली। आपके साथ संगतकार हैं तबले पर दीपक गरुड़ और हारमोनियम पर विश्वनाथ कन्हेरे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी वसुंधरा कोमकली का गायन, राग था रामकली। आपके साथ संगतकार थे तबले पर दीपक गरुड़ और हारमोनियम पर विश्वास कन्हेरे। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे।

0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन। योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आया खुशियों का पैगाम टीम किसान, टीम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
4: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
4: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
5: दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमराए।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
6: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
4: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,000

0: 290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुँच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट है।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द है, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today, trust has become just as important alongside trade.
6: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par lambe samay tak bharosa kiya ja sake. Aur aise samay mein Bharat vishw mein ek trusted partner ke roop mein ubhar raha hai.
5: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
6: 12 saal ke is kalkhand mein Bharat ka GDP doguna hua hai. Airport ki sankhya doguni hui hai. Universities ki sankhya bhi doguni ho gayi hai. Highway construction ki speed 3 guna badh gayi hai. Aur metro network 4 guna bada ho gaya hai.
5: Earlier, the Indian community in France welcomed Prime Minister Modi with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post, Mr. Modi said that the India-France friendship will become even stronger in the times to come as he concludes his visit to France. French President Emmanuel Macron also recorded a special farewell video message in Hindi for Prime Minister Modi as he was wrapping up his trip to France.
7: Priya Mitra Narendra, Mujhe Bahut Khushi, Hui Aapka Nice, Evian, or Paris. Main iske saath jo daure ke liye swagat karke, France aur Bharat ki dosti amara hai. I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I want to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends and various people leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care.
5: Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Paris has filed this report.
8: Referring to Bharat Innovates in Nice and Vivatech 2026 in Paris, he said the world is witnessing India's growing innovation strength. At the Vivatech summit, the Prime Minister called on global innovators to work with India and deliver for all, stressing that technology must benefit everyone. During the visit, India and France deepened cooperation in trade, technology and global security. French CEOs from Saint-Gobain, Mistral AI and CMA CGM expressed confidence in India's growth story and announced plans for greater engagement in manufacturing, artificial intelligence and green maritime infrastructure. Earlier, French President Emmanuel Macron thanked Prime Minister Modi in Hindi through a social media message. Foreign Secretary Vikram Misri said the visit significantly strengthened the India-France partnership across key sectors. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
5: Prime Minister Narendra Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. This incentive has supported

0: आधारित रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमेरिकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत को सिर्फ तिजारत से ही परखा जाता था, लेकिन आज भरोसा भी उतना ही अहम बन गया है जितनी के तिजारत है।
1: हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
0: जनाब मोदी ने ये भी कहा कि मुल्क मुख्तलिफ शोबों में सरमाया लगा रहा है जिससे आने वाली नस्लों के लिए तरक्की, इख्तिरा और मौकों को तकवियत मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के शहर एवियो में G7 की मीटिंग के दौरान एतमाद और भरोसे पर मबनी साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस के लिए भारत का पैगाम बिल्कुल वाजे था कि आलमी हुक्मरानी तभी मुअस्सर साबित हो सकती है जब ये सबकी शमूलियत वाली हो। जनाब मोदी ने ये भी कहा कि वो फ्रांस में एक ऐसे वक्त आए हैं जब उनकी सरकार ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन वर्षों में मुख्तलिफ शोबों में भारत में बड़ी तब्दीलियां आई हैं।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: इससे कबल फ्रांस में भारतीय बिरादरी ने बोंजोर मोदी या हेलो मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के तीसरे मरहले में पेरिस का कामयाब और मुफीद दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत फ्रांस दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। इधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के इख्तिताम पर जनाब मोदी के लिए हिंदी जबान में एक खसूसी अलविदाई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है।
2: Oui, आपका Nice, Evian, Paris, magnifique stade de l'Aurore que lié, स्वागत करके France और भारत की दोस्ती हमारा।
0: पेश है वज़ीर-ए-आज़म के पेरिस के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामा निकार की एक रिपोर्ट।
3: पेरिस में नीस में भारत इनोवेट्स और वीवा टेक 2026 का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दुनिया भारत की बढ़ती हुई इख्तराई कुव्वत का मुशाहिदा कर रही है। वीवा टेक सरबराह मीटिंग में जनाब मोदी ने आलमी इख्तराकारों पर जोर दिया कि वो भारत के साथ मिलकर सभी के फायदे के लिए काम करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा सभी को मिलना चाहिए। इस दौरे में भारत और फ्रांस ने तिजारत, तकनीक और आलमी सिक्योरिटी के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने का इरादा किया। फ्रांस की सरगर्दा टेक कंपनियों ने भारत की तरक्की के सफर में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और ग्रीन बहरी बुनियादी ढांचे के शोबों में और ज्यादा शमूलियत के मंसूबों का ऐलान भी किया। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए

0: असलियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीबात से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। लेबर और रोजगार महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को बाजाब्ता अफरादी कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% खवातीन हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मस्कुर स्कीम कारकुनों और आजिदों की बाजाबता मईशत में शामिल होने के लिए हौसला अफजाई की खातिर तैयार की गई है। इसके तहत पहली बार के मुलाजमीन 15,000 रुपए तक की तरकीब हासिल करने के अहल होंगे। इस तरह उन्हें अफरादी कुव्वत में शामिल होने पर अहमियत की हामिल मदद मिलेगी, जबकि इजाफी रोजगार के मौके दस्तियाब कराने वाले आजिरों को हर इजाफी मुलाजिम रखने पर 3,000 रुपए माहाना तक की तरकीब मिल सकेगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पिछले साल यकुम अगस्त को नाफिज हुई थी। इसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने को फरोग देना और मईशत के सभी शोबों में सोशल सिक्योरिटी दायरे को वसत देना है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पर खास जोर दिया गया है। इसका मकसद 2 साल के अरसे में मुल्क में मुलाजिमत के 3.5 करोड़ से ज्यादा मौके दस्तियाब कराना है। दिल्ली से प्रिया मॉन्डल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 4 रियासतों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। वजारत के मुताबिक तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कीमतों की इमदादी स्कीम के तहत ये सरकारी खरीद की जाएगी। साल 2026 के मौसम गर्मा के सीजन के लिए मंजूरी के तहत उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सरकारी खरीद होगी। वहां 48,298 मैट्रिक टन मूंग, 97,970 मैट्रिक टन उड़द और 41,718 मैट्रिक टन मूंगफली की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। गुजरात में इस मौसम गर्मा के सीजन के लिए 18,250 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। मंजूरशुदा सरकारी खरीद की कम अज कम इमदादी कीमत की मालियत 160 करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का तखमीना लगाया गया है। वजीर मौसूफ ने रबी मार्केटिंग सीजन के तहत तमिलनाडु के लिए मूंग की सरकारी खरीद की हद 885 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मैट्रिक टन करने की मंजूरी भी दी है। इस तरह फसल की 105 मैट्रिक टन इजाफी सरकारी खरीद हो सकेगी। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के लिए मौसम गर्मा के सीजन के दौरान 2,115 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैनुल अक्वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मजकूरा दिन सिकल सेल की बीमारी SCD के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाने के मकसद से हर साल मनाया जाता है। इस दिन बीमार अफराद को लाहिक चैलेंजों को उजागर किया जाता है और बेहतर तहकीक, फंडिंग और मुसावियाना इलाज और मुआलजे की हिमायत की जाती है। मध्य प्रदेश के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया अपनी आबाई रियासत ओडिशा के 2 रोजा दौरे के लिए आज दोपहर मयूरभंज जिला पहुंचेंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मयूरभंज जिले में अपने क्याम के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अवामी फलाह बहबूद, देही तरक्की और कबायली बिरादरियों को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। रायरंगपुर में सदर जमहूरिया एम्स भुवनेश्वर की जानिब से मुनाकिद एक हेल्थ कैंप पहुंचेंगे और देही इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी की फराहमी से मुतालिक एक बड़े मरबूत प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए खसूसी सर्किट हाउस और नए तामीरशुदा रायरंगपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। आकाशवाणी भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन लद्दाख के लेह में आज से शुरू होने वाली योग के बैनुल अक्वामी दिन की तकरीबात में शिरकत करने के लिए वहां के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। ये जनाब राधाकृष्णन का मरकज के जेर इंतजाम इलाके का पहला सरकारी दौरा होगा, जो इस महीने की 21 तारीख तक जारी रहेगा। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदामात किए हैं। آج ہم شمال مشرق میں بڑی تبدیلی لانے سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔

0: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें
5: 0542227658
6: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: संदेश हुआ पूरा सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा में आपका स्वागत। पहला गाना महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में, मनोज कुमार का लिखा, उत्तम सिंह का संगीत बद्ध किया, फिल्म है पेंटर बाबू।

अब आइए सुनते हैं पारस मणि फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और कमल बरोट की आवाज़ों में। असद भोपाली की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने इसकी तर्ज बनाई है।

अब आइए सुनते हैं शालीमार फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: चेहरे बदल जाते हैं।
1: अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और महन लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गाना। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है दो रास्ते।

इसी के साथ ही सदाबहार फिल्म गीतों का कार्यक्रम मधुरमाद यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
2: डीटीएच यानी दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सर्विस, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार, वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के, यानी केबल कनेक्शन का झंझट खत्म। दूरदर्शन की डीटीएच सेवा का गुलदस्ता, 30 से अधिक लोकप्रिय टीवी चैनल और साथ में विविध भारती सहित आकाशवाणी के 12 चैनल, सिर्फ एक छोटा सा डिश और सेट टॉप बॉक्स आपके लिए खोले सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का नया संसार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संभल और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संभल जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अरुण गोस्वामी का।
2: प्रदेश भर में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 20 मई से प्रारंभ हो गया है। इसके तहत प्रिंगणा के एवं सुपरवाइजर घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण एवं गणना कर रहे हैं। जनगणना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 प्रिंगणकों को उप जिलाधिकारी चंदोसी नीतू रानी द्वारा कार्यालय पर एक पुष्प तथा पुस्तक तथा शॉल देकर सम्मानित किया। जनपद संभल में जनगणना 2027 के प्रथम चरण हेतु

0: 4,080 प्रेरणक एवं 680 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। ये सभी कार्मिक 20 जून 2026 तक घर घर जाकर सूचना एकत्रित करेंगे। जनपद प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण में पूछे जाने वाले कुल 33 प्रश्नों के सही एवं सटीक उत्तर उपलब्ध कराएं, क्योंकि इन आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों की रूपरेखा तैयार की जाती है। साथ ही नागरिकों से ये भी अपेक्षा की गई है कि वे प्रेरणकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें, जिससे ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य सुचारू, पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिनांक 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान चल रहा है। अभियान के अंतर्गत कुल 9 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। प्रथम कार्यक्रम के रूप में विश्व पर्यावरण दिवस एवं एक पेड़ माँ के नाम थीम के तहत जनपद में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। जनपद स्तरीय मुख्य कार्यक्रम वन विभाग एवं जिला गंगा समिति के संयुक्त तत्वावधान में शांति वन बबराला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई एवं मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत हरी संकरी वृक्षारोपण करते हुए पीपल, बरगद एवं पाखड़ के पौधे रोपित किए गए। भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक गिन्नौर अजीत कुमार, राजू यादव तथा नगर पंचायत बबराला के अध्यक्ष हर्षवर्धन बारसणे द्वारा त्रिवेणी वृक्षारोपण के अंतर्गत पीपल, बरगद एवं नीम के पौधे लगाए गए। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं बल्कि मात्र सम्मान एवं पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन है। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से ही हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जनपद संभल के लिए वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग तथा नगर विकास विभाग के सहयोग से 4,56,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे 100% पूर्ण कर लिया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सैनी के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय संभल परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत नीम, अर्जुन एवं गुलमोहर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। साथ ही सफाई अभियान चलाकर प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया तथा अस्पताल परिसर से श्री शंकर चौराहे संभल तक जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। सड़कों पर होने वाले हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए मदद करने वालों के लिए अब मददगार नहीं राहगीर नाम से पुकारा जाएगा। रास्तों या हाईवे पर होने वाले हादसों में मृत्यु दर कम करने एवं घायलों को तत्काल मदद पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में राहगीर गुड सैमिट रिटर्न योजना लागू की गई है। इस योजना का मकसद लोगों को मदद के लिए प्रेरित करना और उन्हें सम्मानित करना है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने दुर्घटनाओं में गोल्डन आवर यानी कि हादसे के तुरंत बाद का सबसे महत्वपूर्ण समय के भीतर घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले मददगारों गुड सैमिट रिटर्न के लिए ये अहम पहल की है। प्रदेश में अब ऐसे मददगारों को राहबीर के नाम से जाना जाएगा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए दी जाने वाली इनामी राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए कर दिया गया है। राहबीर योजना के अंतर्गत 5 शर्तों के आधार पर 25,000 रुपए का इनाम राहबीर को दिया जाएगा। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में यूपी में स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द गुड सेमे रिटर्न को राहबीर का डेटा जुटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। विकासखंड गिन्नौर के ग्राम बागव में जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा एक जनपद पांच नदियों थीम के अंतर्गत मंत्रोच्चारण एवं पूजा अर्चना के साथ जनपद में एक जनपद पांच नदियों के अंतर्गत जल संरक्षण, जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विलुप्त प्राय एवं अस्तित्वहीन होती जा रही नदियों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में बर्दमार नदी के पुनरोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नदी की पुरानी पहचान को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से अतिक्रमण हटाने, खुदाई, पौधारोपण तथा अन्य संरक्षण संबंधी कार्य किए जाएंगे। साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत भी कार्य कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। संबल में जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह का शुभारंभ हवन एवं आहुतियों के साथ किया गया। योगाचार्य ने निरंतर योग करने से शरीर में पनप रही तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलने का विश्वास दिलाया। जनपद संभल में चंदोसी, भेजोई, संभल, बबराला, गिन्नौर, असमौली के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में योग दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया। अलग अलग स्थान पर सरकार के निर्देशन अनुसार योगाचार्य ने योग के आसन कराए, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे।
1: संभल जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद का।
2: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जनपद भ्रमण पर आए प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिनका लाभ आम जनता को पहले कभी नहीं मिल रहा था। डिप्टी

0: हमने कहा कि पहले कांग्रेस के कार्यकाल में मनमानी होती थी, आज भाजपा के कार्यकाल में हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर जनपद में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ उत्साह, जन भागीदारी एवं पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ किया गया। जनपद के विभिन्न स्थलों पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा आमजन ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत ने जिला पंचायत कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कैंप कार्यालय परिसर में मौल श्री का पौधारोपित करते हुए कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं बल्कि जीवन संवेदना और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी के प्रतीक है। उन्होंने जनपद वासियों से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विगत दिनों नगर स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह पहुंचकर स्थापित कंप्यूटर लैब का उद्घाटन तथा सर्वाइकल कैंसर जागरूकता एवं HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ व विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने संप्रेक्षण गृह में निवासरत किशोरियों से आत्मीय संवाद कर उनके जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भविष्य की योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बेटियों को शैक्षणिक किट प्रदान करते हुए कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्ति निर्माण, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का आधार है। उन्होंने बेटियों से आह्वान किया कि वे नियमित अध्ययन के साथ साथ विभिन्न रोजगार परक एवं कौशल आधारित गतिविधियों में भी दक्षता प्राप्त करें जिससे वे भविष्य में ससम्मानजनक एवं स्वावलंबी बन सकें। मानसून और संभावित बाढ़ संकट को देखते हुए रामसनीघाट तहसील प्रशासन ने कोयला और खेरी तटबंध पर व्यापक आपदा प्रबंधन मार्ग ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान बाढ़ जैसी आपात परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा गया। मार्ग ड्रिल में नदी में नाव पलटने, लोगों के डूबने, पशुओं के पानी में फंसने तथा बाढ़ से उत्पन्न अन्य आपात स्थितियों का वास्तविक प्रदर्शन किया गया। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों और पशुओं को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और संसाधनों की उपलब्धता की भी जांच की गई। SDM अनुराग सिंह ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिलाधिकारी शान प्रताप सिंह ने विगत दिनों नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस के स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय देश एवं विश्व के लिए अनेक चुनौतियों भरा हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां भी मानवीय संकट का कारण बन सकती हैं। ऐसे समय में मानवता की सेवा एवं राहत कार्यों में सिविल डिफेंस स्वयं सेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। जिलाधिकारी ने नागरिक सुरक्षा संगठन में चयनित चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन, स्टाफ ऑफिसर, वार्डन सेवा तथा सेक्टर वार्डन पदों पर नियुक्त स्वयं सेवकों को बधाई देते हुए उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर शासन के निर्देशानुसार जनपद में 5 जून से 21 जून तक व्यापक स्तर पर समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं, विकास कार्यों, सुशासन की उपलब्धियों तथा आम जन के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के अंतर्गत आयोजित सभी कार्यक्रम सेवा, सुशासन एवं सम्मान के मूल भाव के अनुरूप जन केंद्रित, प्रभावी एवं सहभागिता पूर्ण हो। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में 15 से 21 जून 2026 तक आयोजित किए जा रहे योग सप्ताह का शुभारंभ रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज JIC ऑडिटोरियम बाराबंकी में भव्य रूप से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यमंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति सतीश चंद शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग प्रशिक्षकों, छात्र छात्राओं, अधिकारियों एवं आम जन ने सहभागिता की।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सूचना दे दें खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पहली सूचना कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से आई है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है अब्बास अली, इनके पिता का नाम स्वर्गीय गिल्लू। ये निवासी हैं ग्राम रामपुर पोस्ट पडरिया कला। जनपद मिर्जापुर के ये पिछले 16 मई 2026 से लापता हैं। अब्बास अली के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 76 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है। अब्बास अली के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक का जनपद मिर्जापुर को देने की कृपा करें। यहीं से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है अंजलि, इनके पिता का नाम जोगिंदर सरोज। ये निवासिनी है ग्राम बजरडीहा थाना कछवा जनपद मिर्जापुर की। ये पिछले 7 मई 2026 शाम 5:30 बजे से लापता हैं। अंजलि के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 19 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। ये सिर के बाल मुड़वाए हुए हैं। ये लापता होने के समय नीले रंग की टी शर्ट, काले रंग की लहंगी और गमछा लिए हुए हैं। अंजलि के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को देने की कृपा करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से ही एक और सूचना है। यह है फुलरी देवी, इनके पुत्र का नाम है चंद्रशेखर, जिन्होंने घटना की सूचना दी है। इनके पति का नाम है स्वर्गीय शक्ति। यह निवासिनी है ग्राम नकटी पटेवर थाना मड़िहान जनपद मिर्जापुर की। ये पिछले 8 मई 2026 दिन 2 बजे से लापता हैं। फुलरी देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 52 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है। इनके बाल अधपके हैं। फुलरी देवी के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को देने की कृपा करें। यहीं से प्राप्त एक और खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना दे दें। यह है खुशबू, इनके पिता का नाम रोशन कुमार, ग्राम कदौली थाना चुनार जनपद मिर्जापुर की। ये पिछले 5 मई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें। उम्र 18 वर्ष 2 माह, कद 5 फीट, रंग गोरा है, चेहरा गोल। इनके बारे में कोई भी सूचना या जानकारी अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को देने की कृपा करें। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त हुई। 9:30 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं।

0: जहाँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में है कि आपने हमेशा कहा और ये भी तारीख में है कि जब भी आप तशरीफ लाती थीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकाम से खड़े हो जाया करते थे।
1: जी
0: उनके बारे में आपने फरमाया कि फातिमा बिज़अतु मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी है कि बाकायदा जब ईद की नमाज पढ़ने जाते थे तो दोनों अपने नवासों को अपने शाने में बिठा के लेके जाते थे,
1: बिल्कुल
0: और उनके कहने पे कि इनकी सवारी आवाज निकाल ली तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आवाज निकालते थे।
1: जी
0: यानी आप गौर करें कि ये वो हस्तियां हैं कि जिसके लिए रिसालत खुद सवारी बन गई है।
1: बहुत अच्छा कह रहे हैं आप कि अहले बैत से मुराद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना हैं। इस्लामी तारीख में उनका मकाम व मर्तबा निहायत बुलंद है, क्योंकि उन्होंने दीन की खिदमत, अखलाकी क़ियादत और कुर्बानियों के जरिए उम्मत की रहनुमाई की है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर सैयद महफूज अली साहब मौजूद हैं। महफूज साहब, एक सवाल आपसे करेंगे यहाँ पर कि अहले बैत ने दीन इस्लाम की हिफाजत और फरोग के लिए जो कुर्बानियाँ पेश की, आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं?
2: अहले बैत अतहार ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं वो सारी कायनात में बेमिसाल है और नायाब है, और आज तक उनकी कुर्बानियों के नतीजे में पूरी दुनिया उससे इस्तफादा कर रही है, फ़ायदा उठा रही है, और कायनात के हर इंसान को अहले बैत की कुर्बानियों का कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँच रहा है। और अहले बैत अतहार सलामुल्लाह अलैहिम जो खानवादे रसालत हैं, अगर तारीख़ में देखा जाए तो जो सबसे बड़ी मिसाल है जिसको एक बच्चा बच्चा भी जानता है, वो मिसाल कुर्बानी करबला है, जो एक अजीम कुर्बानी है। और ये कुर्बानी हमें बताती है कि अगर किसी मेराज पर, किसी बुलंदी पर या इंसानियत को आला मकदार पहुँचाना है तो उसके लिए कुर्बानियाँ ज़रूरी हैं।
1: बहुत अच्छा कहा आपने कि अहले बैत की कुर्बानियाँ दीन इस्लाम से बेमिसाल वफादारी और हक़ पर इस्तिकामत की अलामत हैं। कमर साहब, एक सवाल और आपसे करेंगे। अहले बैत की तालीमात मुख्तलिफ कौमों में इत्तेहाद व मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग देने में किस हद तक मुअस्सिर साबित हो सकती है?
0: अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमेशा इत्तेहाद के लिए कहा है, और जिसकी बहुत सारी मिसाल तारीख़ में है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अय्याम अज़ा हैं। इस महीने में सारे कौम के लोग, सारे मज़हब के लोग, हर जगह के लोग, हर इलाके के लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं, और हम उस प्लेटफॉर्म को हुसैनी प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जिसमें किसी भी तरह कोई इख्तलाफ नहीं होता है।
1: बिल्कुल।
0: और आप गौर करें तो इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हर आदमी अपने आप को हुसैनी कहता है, चाहे वो किसी मज़हब का हो, किसी भी कौम का हो। तो हमें इस बात को कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जमा कर दिया है कि जहाँ पे हर कौम, मज़हब, मिल्लत और फिक्र के लोग जमा हो गए। इत्तेहाद की इससे बड़ी और कोई मिसाल नहीं हो सकती है। ये इत्तेहाद तमाम इंसानों के दरमियान में है, लेकिन ये हुसैनियत का इत्तेहाद एक ऐसा इत्तेहाद है जहाँ पे जमा नहीं करना पड़ता है, लोग खुद आके जमा होते हैं और एक नारा होता है, एक परचम होता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी की आज ये नतीजा निकल के सामने आ रहा है कि हर इंसान जमा है। इसके अलावा भी दीगर मकामात पे जो तारीख में मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दूसरी कौम के लिए भी बहुत से काम किए। जैसे आपने बहुत सारे कुएं खोदे, कभी आपने ये नहीं देखा कि उसमें पानी पीने वाला कौन नहीं, बस एक इंसान होना चाहिए। बहुत सारे दरख्त लगाए गए, और इसी तरह से खुद हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने किसी को ये नहीं बताया था शुरू में कि मैं रसूल हूँ, बल्कि लोगों ने उनकी इंसानियत का कलमा पढ़ा।
1: बहुत ही उम्दा बात आपने कही है कि अहले बैत की तालीमात मोहब्बत, रवादारी, अदल और एहतराम इंसानियत पर मबनी है। एक सवाल महफूज साहब से करेंगे। महफूज साहब, अहले बैत की कुर्बानियों से हमें इज्तिमाई और इनफरादी जिंदगी में क्या अमली दुरुस्त हासिल होते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं?
2: अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से हमें अगर इनफरादी ज़िंदगी में देखा जाए तो ख़ुद इंसान मुसीबतों पर सब्र करे, उसके अलावा जब भी बात अपनी हो और अपनी कुर्बानियों की बात हो और किसी को सुकून पहुंचाने का सबब बने हमारा सब्र, हमारी कुर्बानी, तो उसमें दरेग नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा इंसान वही है कि जो बग़ैर कैद मजहब व मिल्लत के किसी भी इंसान को मजबूर परेशान हाल देखे तो अपनी तकलीफ भूल कर अपने आराम की कुर्बानी देकर उसकी मदद करे। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। खुद इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा को दफन करके आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई रो रहा है, तो आप अपने बाप का गम भूल कर उसकी अहवाल कुर्सी के लिए हाजिर हो गए और उसकी

0: मदद की, और उसके बाद जो तफसीलात है वो सबको पता है, मुझे अर्ज नहीं करना। और इज्तमाही ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने, खुद रसूल खुदा ने अनसार और महाजरीन के दरमियान अक़्दे उख़ुव्वत का क़याम फरमाया और अक़्दे उख़ुव्वत कायम किया, सबको एक दूसरे का भाई बनाया। उसके अलावा खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में देखें कि आने वाला शख्स है और इमाम से बदसलूकी कर रहा है, गालियाँ बक रहा है,
1: जी
0: दुश्नाम दे रहा है, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कोई भी रद्द अमल निगेटिव तरीके से जाहिर नहीं किया, बल्कि इमाम मुस्कुरा रहे थे और वह शख्स गालियाँ दे रहा था। जब वह गाली देकर थक गया तो इमाम ने मुस्कुरा कर उससे कहा कि भाई तुम मुसाफिर लगते हो, अगर थके हुए हो तो आराम का इंतज़ाम कर दूँ,
1: जी
0: प्यासे हो तो पानी पिला दूँ, भूखे हो तो खाना खिला दूँ, और अगर तुम्हें रहने की जगह की ज़रूरत है तो मकान दे दूँ, सवारी की ज़रूरत है सवारी दे दूँ, राह सफ़र चाहिए वो दे दूँ। जो एक जहन में उसके एक तसव्वुर था कि रिएक्शन निगेटिव होगा,
1: जी
0: उसके बरक्स जब उसने देखा कि ये तो बिल्कुल ही अलग अंदाज में हमें रद्द अमल मिल रहा है, तो
1: जी
0: वो फौरन कदमों में गिर गया और कहने लगा कि मौला मुझसे गलती हो गई है, मुझे बहका कर भेजा गया था और जितना बुरा आपको बताया गया था मैंने उसके बिल्कुल ही बरक्स आपका किरदार पाया, आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं एक मुसलमान बनना चाहता हूँ।
1: बहुत उम्दा बात आपने कही कि अहले बैत की कुर्बानियों से हमें हक पर कायम रहने, सब्र इख्तियार करने, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने और दूसरों की भलाई के लिए काम करने का दर्स मिलता है। एक सवाल कमर साहब से करेंगे। कमर साहब, अहले बैत की ज़िंदगी में सब्र और इस्तेकामत के कौन से पहलू सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं?
2: अहले बैत अलैहिस्सलाम का सबसे नुमाया किरदार अगर आप देखा जाए तो करबला है, और अगर उसके पहले आप देखें तो खुद मौलाए कायनात की ज़िंदगी, और उनसे पहले अगर आप देखें तो खुद रसूल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। खुद रसूल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ये है कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं और एक औरत है जो ऊपर से आप पे कूड़ा डाल रही है, लेकिन आप खामोश हैं, सब्र कर रहे हैं, और सब्र की इंतहा यह है कि जब वो मरीज़ हो जाती है तो उसकी आयादत के लिए भी आप जा
1: आप
2: रहे
1: जा
2: हैं। खुद मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इस हद तक ज़माने ने जुल्म किया कि आपको लोग सलाम करना छोड़ दिया लोगों ने, तो ये बाकायदा तारीख़ में है कि आपकी शरीक हयात शहज़ादी या फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सवाल किया कि अली मैंने सुना है कि आपको लोग सलाम नहीं कर रहे हैं, तो आपने ये भी जवाब दिया कि सिर्फ यानी कि सलाम नहीं कर रहे हैं, मैं सलाम करता हूँ तो जवाब नहीं दे रहे हैं।
1: जी
2: यानी इस हद तक दुनिया ने जुल्म किया, लेकिन उसके बाद भी खामोशी से सिर्फ सब्र करके, और इसलिए ताकि इस्लाम को ज़िंदा रखना है, इस्लाम को बाकी रखना है, और यही जुल्म जो आगे बढ़ा तो बढ़ते बढ़ते इस हद तक इमाम हसन सलाम की ज़िंदगी में आया कि आपके जनाजे पे भी तीर चले, और ये जुल्म जब आगे बढ़ा तो करबला में उसने वो नुमाया शक्ल ली और वो वहशियाना चेहरा दुनिया के सामने आया कि आज के ज़माने में यजीद एक गाली बन गया कि उसने इस तरह से शशमाहे तक को नहीं छोड़ा और इमाम हुसैन सलाम के पूरे खानवादे को उसने कत्ल गारत किया। उसके बाद भी तारीख में बाकायदा मौजूद है कि जब ये सारा वाकई करबला होने के बाद शब होती है तो शब में जब आपकी बहन सानिया जहरा जनाब जैनब सलामुल्लाह अलैहा नमाज पढ़ती हैं तो वो सजदे शुक्र करती हैं, परवरदिगार तूने हमें इतनी हिम्मत दी है कि हमने इस मुसीबत पे भी सब्र किया है, और ये सब्र ही है, ये सब्र का नतीजा है कि आज हर घर में इमाम हुसैन का नाम लिया जा रहा है।
1: बिल्कुल, बहुत उम्दा बात आप कह रहे हैं कि मुश्किलात, मसाइब और आजमाइशों के बावजूद दीन और हक से वाबस्तगी उनकी जिंदगी का नुमाया वस्फ है। एक सवाल यहाँ पर महफूज साहब से करेंगे। महफूज साहब, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत से मोहब्बत उम्मत मुस्लिमा को क्या सबक देती है, इस पर इजहार ख्याल फरमाएं।
0: इस हवाले से खुद पैगंबर अकरम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अहले बैत से शिद्दत के साथ मोहब्बत का इजहार फरमाया। जब सफ़र पे जाते थे पैगंबर तो हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दीदार सबसे आखिर में करते थे और जब वापस आते थे तो सबसे पहले करते थे, यानी दीदार हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में बीच में कोई चीज़ नहीं होती थी, बल्कि सफ़र का आगाज़ जो होता था यानी जो आखिरी मरहला होता था उसमें शहज़ादे कौनैन की आखिरी खुशबू होती थी, जब सफ़र से वापस आते थे तो उनकी पहली खुशबू पैगंबर महसूस करते थे और फरमाया था कि हमारे अहले बैत से खबरदार, इन्हें कभी सताना मत, इन्हें कभी तकलीफ ना पहुंचाना, क्योंकि हदीस सकलैन खुद इस बात की गवाह है कि मैं तुम्हें दो गिना कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं,
1: जी
0: एक कुरान और दूसरे अहले बैत। तो تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم دو گراں قدر چیزیں یعنی دو وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. قرآن کو چھوڑو گے اہل بیت کو رکھو گے تو بھی تم گمراہ ہوگے, اور اگر اہل بیت سے محبت کرو گے قرآن کو چھوڑ دو گے تو بھی تمہیں گمراہی ہی ہاتھ آئے گی. خود قرآن مجید نے واضح طور پر یہ اعلان کیا, مطالبہ کروایا اللہ نے رسول سے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ, کہ رسول کہہ دیے کہ ہمیں اجر رسالت میں کوئی سونا چاندی زیور نہیں چاہیے.

0: चाहिए, बल्कि अजर रसालत में हमें सिर्फ और सिर्फ तुमसे ये चाहिए कि तुम हमारे अहले बैत से मोहब्बत करो। और जाहिर है कि नमाज, रोजा, हज, जकात जितनी भी इबादतें हैं, ये सारी मेहनत है रसूल की, जिसकी वजह से ये हम तक पहुंची है। अगर आप किसी चीज की उजरत नहीं देंगे तो वो चीज आपके लिए जायज नहीं है। तो इबादतों का यह सिलसिला अहले बैत की मोहब्बत की उजरत के बगैर भी हलाल नहीं है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके अहले बैत से मोहब्बत हमें अहले बैत के एहतराम, उनसे अकीदत और उनके नक्श कदम पर चलने का दर्स देती है। कमर साहब से एक सवाल करेंगे। कमर साहब, अहले बैत के अखलाक व किरदार को मौजूदा मुआशरती हालात में आप किस तरह अपना सकते हैं?
2: सबसे अहम जिम्मेदारी मुसलमानों की यही है कि वो अहले बैत के किरदार और अखलाक को अपनाएं, क्योंकि किसी भी मजहब का आईना उसका अखलाक है, उसका किरदार है। अगर आज के ज़माने में हर मुसलमान अहले बैत के अखलाक व किरदार को अपना ले तो मेरा मानना यह है कि उसे कहीं भी जलील और रुसवा नहीं होना पड़ेगा। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इस ज़माने में हम अहले बैत के किरदार और अखलाक से दूर हो गए हैं। आज जो सारी नाकामियां और परेशानियां आ रही हैं उसकी असल वजह यह है कि हमारी जो हकीकत है उससे दूरी। बाज़ औक़ात होता है गुस्से में आदमी बोल रहा होता है तो हम उसके ज़ाहरी लफ्ज़ को सबसे पहले देखते हैं कि उसने ऐसा बोला, हम ये नहीं देखते कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। हो सकता है उसके साथ कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो। तो अहले बैत की ज़िंदगी सबसे पहले तो हमें इस बात का दर्स देती है कि जब भी आपके पास कोई आए, भले हो सकता है वो तेज़ मिजाज में या तुंद मिजाज में बात कर रहा हो आपसे या तेज़ लहजे में बोल रहा हो, तो हम उसको लहजे को सिर्फ ना देखें बल्कि उसके दिल के दर्द को भी समझने की कोशिश करें। और जिस दिन हम एक दूसरे के दर्द को समझने लगेंगे, हम हकीकत में उस हदफ को समझ लेंगे कि जो हदफ अहले बैत हमें देना चाह रहे थे, और वो हदफ है इंसानियत का हदफ। सबसे बड़ा हक जो दुनिया में है वो एक इंसान का एक इंसान पर है। आज के जमाने में अगर हम देखें कि हमें हर चीज मालूम है, हर चीज के लिए आमादा है, हर चीज के लिए तैयार है, अगर हमारे पास नहीं अगर है तो इंसानियत नहीं है। इंसान को इंसान उसका अखलाक किरदार बनाता है, उसकी सूरत नहीं बनाती है। आयत है कुरान में बाकायदा, ये सराहतन अल्लाह ने फरमाया है कि उलाइका कल अनाम बलहुम अजल, कि वो चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी बदतर हैं। तो इंसान का किरदार इंसान को इंसान बनाता है, वरना जानवरों से भी बदतर बना देता है।
1: एक आखिरी सवाल हम महफूज साहब से करेंगे। आज के प्रोग्राम के पेश नज़र आपके ख्याल में अहले बैत अतहार की कुर्बानियों से अवामुन नास, खास तौर से उम्मत मुस्लिमा, इत्तेहाद व यकजहती का कौन सा सबक हासिल कर सकती है, और आज हमारे सामीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, इसकी वजाहत फरमाएं।
0: सबसे पहले तो यह है कि इत्तेहाद एक ऐसा लफ्ज है कि अगर ये कायनात पे हाकिम हो जाए तो कायनात के सारे मुश्किलात और मसाइल हल हो जाएं। और इस्लाम और ये आज का जो प्रोग्राम है इस्लामियात और मुहर्रम के हवाले से, इसमें सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हमें मजहब और मुल्क व मिल्लत, इन सारी चीजों को दरकिनार करके असल मरहले में इंसानियत को अहमियत देने की जरूरत है। और उसके अलावा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि तुम जो है हमेशा इत्तेहाद में जिंदगी बसर करो। कुछ लोग यहाँ पे मजहब को बीच में ले आते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम सिर्फ मुसलमान से मोहब्बत करें, जबकि ऐसा नहीं है। मौला ने कहा कि मुसलमान से इसलिए मोहब्बत करो कि वो तुम्हारा हम मजहब है, लेकिन दूसरे जो मुसलमान नहीं हैं उनसे इसलिए मोहब्बत करो कि वो इंसान है, वो तुम्हारे ही वजूद का हिस्सा है, क्योंकि हम सब आदम के औलाद हैं।
1: बहुत ही उम्दा पैगाम आपने दिया कि अहले बैत की कुर्बानियां हमें इत्तेहाद, उखुव्वत, सब्र और हक पसंदी का दर्स देती हैं। अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत नसीब फरमाए और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। और अब हम अपने दोनों खुसूसी मेहमान जनाब प्रोफेसर कमरुल हसन साहब और जनाब प्रोफेसर सैयद महफूज अली साहब के बे इंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आप हजरात ने हमारे सामीन के लिए बहुत ही उम्दा और अच्छी मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान दोस्त सैयद मोहम्मद उमर को दीजिए इजाज़त।

0: उर्दू कार्यक्रम खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 241.5।

0: मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज के कलाकार हैं धर्मेंद्र प्रसाद। सबसे पहले इनके स्वर में कहरवा सुने, आइए छोटा सा संदेश सुन लेते हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542।

0: 6 5 8।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें, 0542227658।
2: इस छोटे से अंतराल के बाद आइए लोक संगीत में आपका स्वागत करते हैं। आइए सुने कहरवा, कलाकार हैं धर्मेंद्र प्रसाद।

इस दादरा के साथ ही लोक संगीत का आज ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। कलाकार थे धर्मेंद्र प्रसाद। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 10:35 आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। पहला गाना प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज।

अंदाज था किशोर कुमार का, फिल्म थी प्रेम प्रतिज्ञा। अब आइए सुनते हैं बेवफा सनम फिल्म का गाना सोनू निगम की आवाज़ में, योगेश के बोल, निखिल विनय का संगीत।

0: अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा गाना। तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म है डॉन।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा,

अब आइए सुनते हैं समीर का लिखा गाना नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ सपना अवस्थी की आवाज में। फिल्म है अंश।

एक्शन रीप्ले, आइए सुने इस फिल्म का गाना दलेर मेहंदी और ऋचा शर्मा की आवाज़ों में। रचना इरशाद कामिल की है, संगीत है प्रीतम का।

अब आइए सुनते हैं आशिकी फिल्म का गाना कुमार सानू की आवाज़ में। गीत रचना समीर की है, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: मनोरंजन का नया अंदाज, दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सर्विस यानी DTH। मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार, 30 से अधिक लोकप्रिय टीवी चैनल आपके फिंगर टिप्स पर, साथ ही आकाशवाणी के विविध भारती सहित 12 चैनल। मनोरंजन और जानकारी का ये पिटारा खुलता है सिर्फ एक छोटी सी डिश और सेट टॉप बॉक्स के जरिए, जिसके लिए आप चुकाते हैं छोटी सी कीमत सिर्फ एक बार। केबल कनेक्शन का मासिक शुल्क अब नहीं, दूरदर्शन के DTH यानी डायरेक्ट टू होम सर्विस। मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार में एक बार आपका पुनः स्वागत। आइए सुने मिका सिंह, अमिताभ भट्टाचार्य और नक्ष प्रीतम की आवाजों में एजेंट विनोद फिल्म का गाना। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत प्रीतम का।

आँखों में तुम हो। आइए सुने इस फिल्म का गाना अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत रचना आनंद बख्शी की है, धुन तैयार की है अन्नू मलिक ने।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झनकार के अंतर्गत फिल्मी गाने। आइए सुने चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गाना योयो हनी सिंह और साथियों की आवाज़ें हैं। बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं, संगीत विशाल शेखर का।
1: This is the tribute to Talaiwa.

अब आइए सुनते हैं सनम बेवफा फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। सामन कुमार के बोल हैं, महेश किशोर का संगीत, और यही है कार्यक्रम झनकार की आखिरी पेशकश।

0: इस गीत के साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त तो होता है।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम, वेब्स, ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 11:01 और 8 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत
1: आज रात
0: एक्सप्रेस।

कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का ये प्रोग्राम आप जानते हैं व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981 7905519981। फिल्मों के नाम हम आपको बता

रहे हैं, उसके बाद ही अपनी फरमाइशें भेजें और सबसे पहले फिल्म का नाम जरूर लिखें, एक ही स्थान से दो चार श्रोताओं के नाम लिखें और बिल्कुल शुरुआत में ही संदेश भेज दें, फिर इंतजार करें। आज की फिल्म है एग्रीमेंट, कभी अजनबी थे, नारी, तराना, तुलसी और जीना तेरी गली में। एग्रीमेंट, कभी अजनबी थे, नारी, तराना, तुलसी और जीना तेरी गली में। आज की फिल्में ऐसी हैं जो चर्चा थोड़ी कम होती है, लेकिन गाने उम्मीद है आपको याद होंगे और वो गीत आपको पसंद आएंगे जिनकी फरमाइश आप करेंगे। अग्रीमेंट, कभी अजनबी थे, नारी, तराना, तुलसी और जीना तेरी गली में। इसमें संभवतः जीना तेरी गली में तुलसी और तराना फिल्मों से तो आप अवगत होंगे, ये अपने दौर में बड़ी म्यूजिकल मेलोडी से हिट फिल्में रही हैं।

फिर जैसा हमारे बहुत सारे साथी कार्यक्रमों में जिक्र कर रहे थे, आज नेशनल रीडिंग डे है और बहुत ज़रूरी है आज इंटरनेट और मोबाइल के युग में कि हम किताबों से जुड़े रहें। और हम लोग तो बचपन से सुनते आए हैं कि किताब ही हमारी सच्ची मित्र हैं, तो किताबों को मित्र बनाए रखें और कोई न कोई किताब पढ़ने की निरंतरता में हमें आदत रखनी चाहिए कि प्रतिदिन हम एक दो पेज किसी मशहूर किताब की ज़रूर उसके पन्ने पलटेंगे, पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति की जीवनी हो या बहुत ही जो लोकप्रिय हमारे बनारस के तो तमाम साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को ख़ास तौर से बहुत योगदान दिया है, तो आप प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और खत्री जी, ऐसे ही तमाम नाम हैं जिनके आप पढ़ सकते हैं। और हाल में डॉक्टर काशीनाथ सिंह हैं, ज्ञानेंद्र पति हैं, बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने साहित्य को समृद्ध किया है काशी की धारा से। तो कोई एक किताब ज़रूर अपने पास रखें और उसे पूरा पढ़ें, भले ही धीरे धीरे पढ़ें, क्योंकि देखने और सुनने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से वही बात है, जैसे हम रेडियो सुनते हैं तो कल्पना का विस्तार होता है, वही बातें वो हैं जो किताबों में जब हम कोई कहानी, कविता, नाटक पढ़ते हैं तो हम उस जगह पहुँच जाते हैं और इससे हमारी अंतरचेतना का, शब्द भंडार का, भावों का और अभिव्यक्ति का विस्तार होता है। व्यक्तित्व में बहुत सी चीजें आत्मसात होती जाती हैं अध्ययन से। तो ये तो बातें हो गई। फिल्में एग्रीमेंट, कभी अजनबी थे, नारी, तराना, तुलसी और जीना तेरी गली में। और इस दरमियान आपके बहुत सारे संदेश आ गए, ये कहें कि 11:30 तक अपने मैसेजेस हमें जरूर भेज दें और एक बार ही भेजें। कई श्रोताओं ने तुरंत में भी 5-7 बार लिख दिया है, तो कुछ भी और बातें न लिखें। और बातें लिखने के लिए तो हमारे यहाँ आजकल बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें आप कुछ भी पूछे हुए विषय पर अपनी बातें लिखते हैं। इस प्रोग्राम में संदेश में सबसे पहले फिल्म का नाम और अपना नाम, जगह का नाम लिखें, उसके बाद अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं ताकि उस फिल्म के गाने के साथ आपकी फरमाइश पूरी हो सके। आइए कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं अग्रीमेंट फिल्म के इस गीत के साथ। फरमाइशें बहुत सारी हैं, लता मंगेशकर की आवाज, गुलशन बावरा के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत।

एग्रीमेंट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीतकार बप्पी लाहिरी। इस गीत को सुनना चाहा हमारे इन श्रोताओं ने। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। कृष्णा पार्क दिल्ली के हमारे श्रोता हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना। गांव गहमर चांदनी चौक जिला गाजीपुर से हैं त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ और कोमल। नेहरू चौक पैठण से संदेश आया है सुरेश जाधव, अनिता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव का। मोहसिन अंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, सद्दाम अंसारी,

मुश्ताक अंसारी हैं कोटवा वाराणसी के श्रोता। इसी गीत को सुनना चाहा हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया और रानी ने माँ काली स्थान नौली गाजीपुर से। ये संदेश है जमानिया गाजीपुर से आया हुआ सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के श्रोता हैं पीएस नहावकर और निर्मला नहावकर। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा की फरमाइश छत्तीसगढ़ पलारी से आई। और ये व्हाट्सएप संदेश मलोट पंजाब से आया है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ और साइना शर्मा का। जनकपुरी सहारनपुर से हमें सुन रहे हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। रामनगर से सोनू अंसारी और लंबे बाबू। गमरिया जमशेदपुर के श्रोता है रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, मुराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल। हीरावाली फाजिल का पंजाब से ये संदेश सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदू और पार्वती का। मोटाला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। सिद्धार्थनगर ददरेंगी भाटापारा से हैं हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अशोक येले। भुज कच्छ गुजरात से हैं रसिक, अशोक, रमेश और अशोक रबारी। गांधी चौक बाड़मेर से ये फरमाइश आई है बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मनीष पंवार की। जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ हैं ग्राम हिंगली आलोट रतलाम से। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश ऋषि सेन, रितेश सेन और हर्ष कुमार सेन की। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुता सुवर्ण आनंद हमें सुन रहे हैं पाकुड़ झारखंड से। बजडीहा वाराणसी से ऐनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी, सलीम आजाद अंसारी और बद्रुद्दीन अंसारी। गांव चोहल्दा बागपत के श्रोता हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और कमल साहनी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी। ये फरमाइश है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की भोपालगढ़ राजस्थान से। दिनेश चौहान, उमेश चौहान, अदिति चौहान हैं गांवली है दिगर तालुका जामनेर जलगांव के श्रोता। ग्राम पजौनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया की फरमाइश आई है। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। मुजफ्फरपुर बिहार के श्रोता हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज की रतनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल और डिंपल की फरमाइश। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है कभी अजनबी थे। यह आवाज अशोक खरे की है, देव कोहली ने गीत के बोल लिखे हैं और विजय सिंह का संगीत है।

जी हाँ, और आपके संदेश आए इस गाने के लिए जो फिल्म कभी अजनबी थे से था, अशोक खरे की आवाज में। फरमाइशें आप सबकी हैं। आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान, वसीम खान, कछुआ कला, शाहजहांपुर में ये जगह है। जवाहर नगर दुर्ग से हमें सुन रहे हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। विनय प्रजापति, वंजना प्रजापति, राहुल प्रजापति और गोविंद प्रजापति की फरमाइश जलालीपुरा वाराणसी से। आप हैं गुरजीत सिंह, नगर पंचायत बिलसांडा, पीलीभीत से। ये फरमाइश है रईस खान, साबिया खान, अनस खान, शकील खान और दानियाल खान की। फुले नगर अम्बीवली, मुंबई, महाराष्ट्र से आई हुई। हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता को हम शुक्रिया कह रहे हैं। आप हैं नथाना पंजाब से। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज हैं सीतामढ़ी बिहार के हमारे श्रोता। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से हैं नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस, जय और हर्षिता। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान हैं जोधपुर राजस्थान से। शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा और आयजा अनम, इस संदेश में आपने जगह का नाम नहीं लिखा है। मुबारकपुर आजमगढ़ के श्रोता हैं जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तूबा अफरीन। ग्राम चरोदा बार, नवापारा अभ्यारण, बलौदा बाजार से हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर और ज्योति ठाकुर। गांव देगांव, तहसील पूर्णा, महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात, कविता थोरात और श्रेया थोरात। शिवराजपुर चुनार से हमें सुन रहे हैं आर अश्विन, शानू, शोभनाथ अवस्थी और उनके मित्र। ग्राम ममना, हमीरपुर बुंदेलखंड के श्रोता हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और अनुराग मोहन की फरमाइश किशनगंज बिहार से आई है। कुरासी भैसा, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज, सुष्मिता और दीपिका साहू। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी और उज्ज्वल दास मानिकपुरी। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना है लदावली मुरादाबाद से। लसुड़िया पाता, नरसिंहगढ़, राजगढ़ के श्रोता हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी।

पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और तुलसी मस्कीन। चकपुटे ही असनाव बाजार भदोही के श्रोता हैं गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, बीरेंद्र कुमार और सानवी यादव। हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी की फरमाइश। बागरी मोहल्ला रटलाई झालावाड़ राजस्थान से। साथ में है मनभावन, शोभा, कपिल नैना, सत्यनारायण और फुंदी भाई बागरी। भीलखेड़ी सारंगपुर से हैं धनराज बैरागी और सीमा बैरागी किट्टू। रमेश चंद्र चौहान ने इस गीत को सुनना चाहा। साथ में जय नारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान, मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से। रामसकल चौधरी चोचकपुर बाजार गाजीपुर से हैं और ये फरमाइश है सतीश शर्मा की चंडीगढ़ से। बोरखेड़ा पित्रामल से हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त और चेतन नाहटा। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म का नाम है नारी, किशोर कुमार की आवाज, एमजी हर्षमत ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है। बाकी फिल्म है तराना, तुलसी और जीना तेरी गली में। वक्त रहते अपनी फरमाइशें भेज दें और फिर इंतजार करें।

ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। इसे लिखा है एमजी हर्षमत ने, शंकर जयकिशन का संगीत था फिल्म नारी के लिए। फरमाइशें आप सबकी सहारनपुर से हैं सोनाली नारंग, आशा नारंग, सुरेश नारंग, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू, साथ में राजेश कुमार, प्रीति, कार्तिक और आर्यन। एक संदेश में एक ही स्थान के कुछ श्रोताओं के नाम लिखा करें और नाम पूरे प्रॉपर जो होते हैं वो ही लिखें, कोई और संबोधन या उपनाम न लगाएं।

तजुर्बे हैं वो हमसे साझा करें। और पीकेएलडी एआईआर वाराणसी उस प्रोग्राम का नाम है जो रविवार को मैच जब नहीं होता है आमतौर पे तो शाम 7:31 पर प्रसारित होता है। इन दिनों 5 जुलाई तक क्रिकेट मैच हैं जिनकी कमेंट्री आप शाम को सुनेंगे, तो रविवार को यानी 5 जुलाई तक ये प्रोग्राम दिन में 1:15 पर प्रसारित होगा रविवार को ही। तो कार्यक्रम में जरूर शामिल हूँ। पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम का नाम है आप जानते हैं pkldaiarvaranasi@gmail.com पर प्रतिक्रियाएं भेजें और इस मेल आईडी पर फरमाइशें न भेजें। तो बहुत से हमारे श्रोता जो इस प्रोग्राम में आते हैं लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं नहीं मिलती तो इसका ख्याल रखें। गांगीवाड़ा छिंदवाड़ा से रमनदीप परिहार, राजदीप परिहार, अर्पणा परिहार और सुधा परिहार की फरमाइश आई है। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और सोनम विश्वकर्मा हैं। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से, लोरमी चचेड़ी से हमें सुन रहे हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी और पुष्पराज मरावी। अड़ार नाथघाट छत्तीसगढ़ से फरमाइश आई माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दिपेश की। मोहम्मद यासीन अंजान, साइबा नवाज, हसन नवाज का हम प्रोग्राम में स्वागत कर रहे हैं। आप सभी हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। रविंद्र सिंह छावड़ा और परिवार के सदस्य टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। नफीस अहमद अंसारी, शमीम अहमद अंसारी, अनीस अहमद अंसारी, अजीज अहमद अंसारी, मोहम्मद रजा, सुनील रस्तोगी, रेहान अहमद अंसारी हैं।

या मधु बालूजा, सागर बालूजा हैं, सतना से और कुछ नाम इसमें मजनू का टीला से हैं। थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आज का ये प्रोग्राम यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप

वीरेंद्र भ्याड़, शमशेर भ्याड़, सुरेंद्र, मनोज और उनके दोस्त। निम्नाबाद जिंद हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जती इंदुगिरी, विशालगिरी और परिवार के सदस्य। मदन ही गाजीपुर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज और फरदीन अब्बासी हमें सुन रहे हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से कटरा मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं जावेद अख्तर अंसारी, निगत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद और शाहिद हसन आजमी। झारखंड बड़ा बम्बो सुपाई साई गांव से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती और प्रकाश तांती। जयराम बिन सीता, मुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रदुम्न और प्रीतम कुमार चौसा गोला बक्सर से। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओमकार साई। चोचकपुर गाजीपुर से हैं भास्कर दुबे। आज आवाज रुक रुक कर आ रही है, लेकिन और किसी श्रोता ने ऐसा नहीं कहा। हो सकता है आप हमें अगर ऐप पे सुन रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दें कि नेटवर्क सही हो। पुरानी भिलाई चीन चरोदा से ये बात लिखी है डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीद उन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी और शाहनवाज अहमद सिद्दीकी ने। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी, आशीष कुमार महरेव जौनपुर से। आशीष जी एक बार भेज देते हैं तो फिर इंतजार करें बार बार।

गुराया जालंधर से। नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद शाहिद हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र के श्रोता। कलमंडी खुर्द झालावाड़ से अनूप सिंह नाथावत। उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल साहिल भारती बघेल हैं लगान पंढरिया छत्तीसगढ़ से। फरदीन अब्बासी सुहाना अब्बासी अरजान अब्बासी अबान अब्बासी और उनके परिवार के बाकी सदस्य हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदर शहर से। जेल रोड रायगढ़ से हैं सौरभ निषाद प्रकाश कुमार बबलू निषाद और तरुण यादव। भूषण खेड़ा विशु खेड़ा लाडी खेड़ा और विशाल खेड़ा फाजिलका पंजाब से हमें सुन रहे हैं। विनोदपुरी वीपी रंजू अशोकपुरी और सुशीलपुरी हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से।

तुलसी फिल्म के इस गीत के लिए और भी फरमाइशें हमारे पास हैं। प्रेमलाल वर्मा, निकेत, हर्षिता और ममता बाई वर्मा हैं, खेरगांव तहसील महेश्वर से। मुबारकपुर उची तकिया आजमगढ़ के श्रोता हैं दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा। ये फरमाइश है राजेंद्र यादव, भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप और भगेलू यादव की। वलीदपुरा मढ़ा मऊ से आई हुई, शुक्रिया आपका। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और गर्वी की फरमाइश जोधपुर राजस्थान से है। धारहरा से हैं बजड़िया वाराणसी से ऐनुल्लाह अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी, सलीम आजाद अंसारी और बदरुद्दीन अंसारी। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश, और ये आज के गीतों की श्रृंखला में आखिरी कड़ी है। फिल्म है जीना तेरी गली में, नितिन मुकेश, अनुराधा पौडवाल की आवाजें, रविंद्र रावल के बोल और बाबुल बोस का संगीत है।

गीतों की श्रृंखला में आखिरी कड़ी है। फिल्म है जीना तेरी गली में। नितिन मुकेश, अनुराधा पौडवाल की आवाजें, रविंद्र रावल के बोल और बाबुल बोस का संगीत।

जीना तेरी गली में फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है, फरमाइशें पहुंची हैं आप सबकी। हमारे श्रोता अनिल कुमार गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अग्रिम गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता, पूजा गुप्ता गौंड, पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 वाराणसी से। रामगंज खंडवा से संदेश आया है विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल और विवेक का। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने हैं राहुल नगर अमरावती से। मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान लल्ला और फरहान लल्ला।

जीना तेरी गली में फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है, फरमाइशें पहुंची हैं आप सबकी। हमारे श्रोता अनिल कुमार गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अग्रिम गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता, पूजा गुप्ता गौंड, पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी लोली से जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में। फरासी हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी, सुभाष योगी, सुशील योगी, कृष्णा कॉलोनी हासी से आपकी फरमाइश आई है। बेवरा संबलपुर से शिवदयाल वर्मा और नरोत्तम वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता, राजकिशोर सिंह, बड़क सिंह चौहान, आर के सिंह चौहान, मोती माला गुप्ता, लाल बिहारी सिंह और बीरा सिंह है गणों का लालगंज रोहतास बिहार से।

जीना तेरी गली में फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है, फरमाइशें पहुंची हैं आप सबकी। हमारे श्रोता अनिल कुमार गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अग्रिम गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता, पूजा गुप्ता गौंड, पहड़िया अशोक विहार कॉलोनी लोली से जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में। फरासी हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी, सुभाष योगी, सुशील योगी, कृष्णा कॉलोनी हासी से आपकी फरमाइश आई है। बेवरा संबलपुर से शिवदयाल वर्मा और नरोत्तम वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता, राजकिशोर सिंह, बड़क सिंह चौहान, आर के सिंह चौहान, मोती माला गुप्ता, लाल बिहारी सिंह और बीरा सिंह है गणोखा लालगंज रोहतास बिहार से। रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, धर्मेश मौर्य, अंचला मौर्य हिसार हर प्रसारित होता है लेकिन इन दिनों 5 जुलाई तक क्रिकेट मैच की वजह से ये प्रोग्राम प्रसारित होगा दिन में 1:15 बजे से। और अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

पुरानी बस्ती मुबारकपुर से हैं शाहिद जमाल, दानिश जमाल, आसिफ जमाल और सहजेब अनवर। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग और टोनी दीवान। जयराम बीन, सीतामुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी हैं चौसा गोला बक्सर से। इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद और अजरा तबस्सुम की फरमाइश भावपुर मड़ियाहू से आई हुई है। पिहरा बाजार झुमरी तलैया से हैं अभय कुमार, सना तनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी और रिया। विशाल मिश्रा बंधवा बाजार माधोपुर इनेलिया से। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से ये व्हाट्सएप संदेश मोहम्मद इशाक, कतीजा बेगम, अशफाक और आफरीन कौसर का है। नवपुरवा चौचकपुर गाजीपुर से हैं सलोनी कुमारी और सूरज चौधरी। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से। सुनील पाठक हैं अनारकली बाजार जगराव से। सोनवर्षा खानपुर चुनार से हमें सुन रहे हैं मिर्जापुर से। अनिश राजभर, मनीष राजभर, आकर्ष राजभर और आशीष राजभर। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं

0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
1: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
0: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
1: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
0: जी
1: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा।
1: जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार धाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
0: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
1: स्वागत है आप सबका। श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
0: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे पतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
1: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
0: हमारे

0: का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-44-0559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलीवर की विचित्र यात्राएं।
0: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा
2: मैं
0: का रेडियो
2: जहाज पर नौकरी
0: किया
2: करता
0: है, जो रहस्यों और रोमांच से
2: नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
0: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की
2: एक
0: बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप
0: को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
0: थोड़ा सा कंबल था,
2: कि कोई चीज
0: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं न जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो

लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी।

उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर

से अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई, तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है

0: मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
1: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए
7: 0542227658।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नेहा चटर्जी की गाई भक्ति रचनाएं। पहले सुनिए मीराबाई की रचना।

नेहा चटर्जी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे मलूक दास की रचना। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित कृष्णाराम चौधरी और साथियों का शहनाई वादन। राग है वृंदावनी सारंग।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित कृष्णाराम चौधरी का शहनाई वादन, राग था वृंदावनी सारंग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेब्स OTT पर एक साथ उपलब्ध हैं। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1 बजने को है अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: लीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व

0: स्थल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जौनपुर से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार सोनी, पति का नाम अरविंद यादव, ये कोतवालपुर गौराबाद शाहपुर जौनपुर की निवासी हैं और 16 मार्च 2026 को दिन में 11 बजे से अपने घर के पास मुफ्तीगंज बाजार से लापता हैं। सोनी की आयु है 29 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था हरे रंग की छीटदार साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जौनपुर को सूचना दें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर से प्राप्त एक सूचना, इसके मुताबिक सुरेश प्रजापति, पिता का नाम पन्ना प्रजापति, ये बियर ही जमालपुर मिर्जापुर के निवासी हैं और 8 मई 2026 की रात्रि 9 बजे से ग्राम बियर ही से लापता हैं। सुरेश प्रजापति की आयु 38 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है, आंखें और बाल काले हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था भूरे रंग का टी शर्ट और नीले रंग की लोअर। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर को सूचना दें।

साधना, पति का नाम राम बली गौड़, ये ग्राम लरवक कछवा मिर्जापुर की निवासी हैं और 12 मई 2026 से जमुआ बाजार से लापता हैं। साधना की आयु है 40 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, दोहरा शरीर, चेहरा लंबा है, आंखें और बाल काले हैं। आखिरी बार इन्हें जब देखा गया तो इनका पहनावा था लाल रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज शाम 5:10 से आप सुन सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण। इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय याद रखें शाम 5:10 से। रात में 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में मनोहर लाल का बांसुरी वादन प्रसारित होगा। स्वास्थ्य पत्रिका आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। अंजुमन कार्यक्रम होगा रात में 9:30 पर। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 19वीं कड़ी आप सुनेंगे, पर्यावरण विषय पर केंद्रित। प्रसारण समय रात्रि 8:10 का। सुगम संगीत कार्यक्रम होगा रात में 8 बजे, कलाकार पंडित सीताराम सिंह। कृष्णगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर लोकगीत की कलाकार होंगी डॉक्टर माधवी सिंह। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर जोखन सिंह की वार्ता होगी धान की उन्नत प्रजातियां। दिन में 2:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में अभिनेत्री नूतन पर केंद्रित कार्यक्रम होगा प्रस्तुति पूजा सिंह की। लोक संगीत कार्यक्रम में 1:45 पर आप सुन पाएंगे धर्मेंद्र प्रसाद के गाए लोकगीत। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में 1:15 पर चर्चा और गीत संगीत के अलावा शिखा बर्मन की वार्ता होगी सरकार के 12 वर्ष और नारी वंदन। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: वीरांगना झलकारी बाई के आलिशान मुजस्मे की नकाब कुशाई के साथ 126 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान वजीर आला ने अपने खिताब में अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे के मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। वजीर आला ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की गुजारिश पर हुकूमत ने SIT तश्कील की है और यह जाँच पूरी शफाफियत से होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कोई दस्तावेजी सबूत है तो उसे SIT को सौंपे और जाँच पूरी होने तक गैर जरूरी बयानबाजी न करें। वजीर आला ने कहा,
1: राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है, 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है, 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 4 रियासतों तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत MSP पर दालों और तेल के बीजों के बड़े पैमाने पर खरीदारी को मंजूरी दे दी है। ये खरीदारी इन रियासतों में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीदारी को मंजूरी दी गई है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को होने वाले NEET UG के दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने इम्तिहानी अमल में दयानतदारी, शफाफियत और कारकर्दगी के आला मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम जरूरी इंतजाम को यकीनी बनाएं और आजादाना और मुनसिफाना तरीके से दोबारा इम्तिहान के इनेकाद के लिए चौकसी इख्तियार करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल जिक्र तरक्की की है। इस मौके की मुनासिबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए तरक्की के 12 साल। आज के शुमारे में हम शुमाल मशरक की तब्दीली के लिए हुकूमत के अहम इकदाम पर रोशनी डाल रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए PM डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड UP ATS ने बुलंदशहर जिले से 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से है। इन पर गैंग के दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल होकर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम है। और महकमा मौसमियात ने रियासत के मशरकी और मगरबी अजला के अलग अलग इलाकों में 24 जून तक गर्मी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अगले 2-3 दिनों के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बतदरीज इजाफे की भी पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा। मीडियम वेव
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
4: सखियों के साथ,
5: सखियों के बाद,
4: सखियों के जज्बात,
5: गृहलक्ष्मी।
6: संभल कर निकलिए बाहर, क्योंकि सफर में धूप बहुत है। जिंदगी का उसूल कुछ ऐसा है कि हम सबको काम बहुत है, उसी काम में 2 पल का आराम और खुशी के लिए हमारा प्रोग्राम भी है। आ गए हैं कुछ बात, खुशी और टिप्स के साथ। कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में आपकी सखियां आपके पास बहुत हैं। स्वागत है आप

0: सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में मैं कंचन
1: और मैं मंजरी
0: स्वीकार करें
1: कीजिए
0: हमारा
1: नमस्कार।
0: कैसी हैं मंजरी जी?
1: बहुत अच्छी हूँ कंचन जी, बस धूप ने थोड़ा बेहाल कर रखा है।
0: हाँ, धूप तो है और इस धूप से हम सभी को बच के भी रहना है।
1: बिल्कुल,
0: काफी अच्छे से अपने आप को कवर करके ही निकले और पानी भी खूब पिए, है ना
1: जी
0: मंजरी? हम सखियां हमेशा अपनी सुरक्षा आ गए हैं कुछ बात, खुशी और टिप्स के साथ। कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में आपकी सखियां आपके पास बहुत हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। मैं कंचन
1: और मैं मंजरी
0: स्वीकार करें
1: हमारा नमस्कार।
0: कैसी हैं मंजरी जी?
1: बहुत अच्छी हूँ कंचन जी, बस धूप ने थोड़ा बेहाल कर रखा है।
0: हाँ, धूप तो है और इस धूप से हम
1: जी
0: सभी को बच के भी रहना है।
1: बिल्कुल,
0: काफी अच्छे से अपने आप को कवर करके ही निकले और पानी भी खूब पिए, है ना
1: जी
0: मंजरी? हम सखियां हमेशा अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहते हैं और हमें अपनी सुरक्षा को हमेशा पहले सुनिश्चित भी करना चाहिए, चाहे वो घर हो या हमारे काम करने की जगह हो। हमें हर जगह पहले अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि इस बदलते हुए समाज में हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई और क्यों ले भाई, वो भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना।
1: बिल्कुल, अगर हम अपनी सुरक्षा के प्रति स्वयं जागरूक नहीं रहेंगे तो फिर दूसरा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है। हालांकि हमारी सरकार ने, हमारी बहुत सारी संस्थाओं ने हमारे लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद पे ज़्यादा होती है।
0: हाँ
1: और सखियों, आज का दिन भी बहुत खास है, क्योंकि

0: हित बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा, भविष्य की सुरक्षा और देखभाल करने वालों का सशक्तिकरण, ये इस साल का थीम है मंजरी।
1: बिल्कुल। और सखियों, यौन हिंसा केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता की आत्मा पर एक गहरा घाव है। अंतर्राष्ट्रीय यौन हिंसा उन्मूलन दिवस हमें याद दिलाता है कि जब तक दुनिया के किसी कोने में एक भी इंसान इस बर्बरता का शिकार हो रहा है, तब तक हमारा समाज खुद को सभ्य नहीं कह सकता। यह दिन केवल पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताने का नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और सम्मानजनक दुनिया बनाने के लिए अपने संकल्प को दोहराने का दिन है।
0: बिल्कुल। और अगर कहीं पर भी इस तरह की हिंसा हो रही है या कोई भी इससे पीड़ित है, तो अब वो समय नहीं रहा कि आप चुप रहें। आपको बिल्कुल अपने लिए आवाज उठाने की जरूरत है, और इसके लिए एक कठिन लड़ाई भी हो तो उसके लिए भी पीछे नहीं हटना है ना मंजरी जी?
1: बिल्कुल सखियों, और आज हम बहुत कार्यक्रम में विस्तार से इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इतनी विस्तार में जाने से पहले हम सोचते हैं कि क्यों ना आपका थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। तो पहले करते हैं आपका मनोरंजन इस गीत के साथ, और फिर आगे की बातें हम करते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
5: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
6: सखियों, हम कार्यक्रम के शुरुआत में बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय यौन हिंसा उन्मूलन दिवस के बारे में। ऐसे बहुत सारे दिवस होते हैं कि जो हमें हमारे अधिकारों के बारे में जागरूक कराते हैं। वैसे तो संविधान ने हमें 6 मूलभूत अधिकार दिए हैं जो कि स्त्री पुरुष सभी के लिए बराबर हैं, लेकिन इसके अलावा महिलाओं को विशेष कुछ अधिकार मिले हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, दहेज उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता जैसे अनेक अधिकार महिलाओं को विशेष रूप से दिए गए हैं। और हम सभी को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए।
7: बिल्कुल, मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को प्राप्त हैं, चाहे उनकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, धर्म या कोई भी अन्य हो, बिना किसी भेदभाव के सभी को प्राप्त हैं।
6: और जैसा कि मैंने कहा कि हम महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं, तो ये हमारी सरकार भी जानती है और पूरी दुनिया जानती है कि अगर नारी का उत्थान नहीं हुआ, यानी आधी आबादी अगर अभी भी पीछे है, तो वो विकास नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी भारत सरकार जो है उसने समय समय बहुत सी ऐसी योजना चलाई है कि जो महिलाओं के उत्थान में अपनी भूमिका निभाती है। और हमारी जो वर्तमान सरकार है उसने अभी हाल ही में अपने 12 वर्ष पूरे किए हैं। तो सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उसने बहुत सारे काम, मतलब 12 सालों में उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए जो महिलाओं के हित में है। तो ऐसे ही कुछ

0: योजनाओं में, जैसे मातृत्व से संबंधित भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो आज हम एक अच्छी सी वार्ता सुन लेते हैं। वार्ता का विषय है सरकार के 12 वर्ष और नारी वंदन, और वार्ताकार है शिखा बर्मन।
1: यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी संस्कृति सदैव से ही विश्व के लिए एक ज्योति स्वरूप है। हमारे यहाँ नारी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह कभी पत्नी, कभी बेटी, कभी माँ तथा कभी बहन के रूप में होती है तथा अपने त्याग और समर्पण से जीवन के पथ को आलोकित करती है। आधुनिक महिला, सशक्त महिला के साथ ही अगर हम अपनी आदि परंपरा को भी जानें, तो हमारे यहाँ आदि शक्ति माँ जगदम्बा है, धन की देवी माँ लक्ष्मी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्न प्रदान कर सबको पोषण प्रदान करने वाली माँ अन्नपूर्णा देवी रूप में सदैव पूजित हैं। शिव के साथ सदैव शक्ति का पूजन होता है। देवताओं को भी पहले उनकी माँ और पत्नी के प्रथम नाम से ही जाना जाता है। यशोदा नंदन कृष्ण, कौशल्या नंदन राम, सीता राम, राधे श्याम। महिलाओं को सदैव से ही अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वैदिक काल में महिलाएं शास्त्रार्थ और ज्ञान की दृष्टि से भी पुरुषों के समकक्ष थीं, जैसे गार्गी, अपाला, मैत्रीय, विद्योत्तमा। भारत पर कई आक्रांताओं के आने तथा धीरे धीरे रूढ़िवादिता के प्रचार प्रसार के कारण स्त्रियां कुछ समय के लिए घर की सीमा में जरूर थीं, किंतु उनकी प्रतिभा को ये सीमा भी नहीं बांध पाई। नारी जन्मदात्री के साथ पालनकर्ता भी है। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन घर की परिधि से बाहर के क्षितिज तक कर रही है। आधुनिक युग की नारियों की भूमिका धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में अग्रसर रही है। आधुनिक युग की नारी घर संभालने के साथ साथ नौकरी और व्यवसाय भी कर रही है और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि गृहिणियां देश की GDP में सहयोग कर रही हैं। आधुनिक नारी को हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। पहले की अपेक्षा देश, काल, परिस्थिति के अनुसार उनमें बहुत परिवर्तन आया है। आज वो आत्मनिर्भर हैं। नारी सिर्फ सौंदर्य और प्रेम की प्रतिमूर्ति नहीं, बल्कि सभी क्षेत्र में विकास करते हुए देश की मजबूत नींव का पत्थर भी हैं। महिलाएं अंग्रेजी राज्य में भी देश की आजादी में सक्रिय भागीदार थीं, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसिफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। 1950 में जब देश को संविधान मिला तो स्त्रियों को सुरक्षा, सम्मान, पुरुषों के समान अवसर और अधिकार मिले। 1966 में हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, किरण बेदी प्रथम महिला IPS ऑफिसर, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर प्रथम भारतीय महिला, मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज मिला, फातिमा बीबी प्रथम महिला जज सुप्रीम कोर्ट की, मेधा पाटकर जी सामाजिक कार्यकर्ता, सुषमा स्वराज उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ। इन सब ने अपनी योग्यता और बुद्धिमता से भारत के नाम को और भी बुलंदियों पर पहुंचाया। आज नारियां पुरुषों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। वे उच्च शिक्षित हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री जैसे विभिन्न उच्चस्थ पद पर सुशोभित हैं। अपने वस्त्र, जीवन शैली के साथ साथ अपने जीवन साथी का चुनाव करने को भी वे स्वतंत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवर्तन की नई लहर देखने को मिली। बिजली, TV, मोबाइल गांव-गांव तक पहुंचे हैं। महिला के सशक्तिकरण से भारत की आधी आबादी शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनती है। सशक्तिकरण के 4 स्तंभ हैं। उन चारों में ही वैचारिक दृष्टि से और वास्तविकता के धरातल पर बहुत बदलाव हुए हैं। आर्थिक स्वावलंबन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन चारों ही क्षेत्रों में पिछले 12 वर्षों में महिलाओं और भारत के सुधार विकास के सतत और मजबूत प्रयास हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के इन चारों स्तंभों पर सराहनीय प्रयास किए हैं। 2014 से ही हमारे प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में बदलाव की मजबूत लहर देखी है। पिछले 12 वर्ष 2014 से 2026 तक में भारत सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु महिला कल्याण से बदलकर महिलाओं

के नेतृत्व में विकास हो गया है। राजनीतिक सशक्तिकरण और ऐतिहासिक कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम वर्ष 2023 में संसद द्वारा पारित इस ऐतिहासिक कानून के तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया है। तीन तलाक की समाप्ति कर मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत तीन तलाक को अपराध घोषित कर करोड़ों महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दी गई है। अब महिलाएं सिर्फ दर्शक दीर्घा में नहीं हैं, बल्कि देश के विकास की सूत्रधार भी बन रही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वितरित किए गए कुल ऋणों में लगभग 70% ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। लखपति दीदी योजना में स्वयं सहायता समूहों की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोले गए, जिसमें 55% से अधिक खाते महिलाओं के नाम हैं। इससे वित्तीय समावेशन बढ़ा है। वन स्टॉप सेंटर सखी योजना, घरेलू या कार्यस्थल पर हिंसा या उत्पीड़न से परेशान स्त्रियों के लिए एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये पुलिस सहायता प्रदान करता है, चिकित्सा सेवा, काउंसलिंग, और अगर उन स्त्रियों के पास रहने के लिए कोई स्थायी आवास न हो तो उन्हें 5 दिन का अस्थायी आश्रय मुहैया कराया जाता है, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिल सके। ऐसे ही दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ रहा है। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में वंचित समाज की महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 10 करोड़ से अधिक मुफ्त LPG कनेक्शन बांटे गए हैं, जिनसे इन महिलाओं को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत राहत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 75% से अधिक आवास महिलाओं के नाम हैं। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बेहद संवेदनशील मुद्दे जैसे शौचालय की जरूरत की बात उठाई और देश भर में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया, जिसने महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन दिया। महिलाओं की शारीरिक आवश्यकता को समझते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना शुरू की गई, जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के सीधे बैंक खाते में वित्तीय सहायता पहुंचाकर करोड़ों महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है। शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें 3 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिन पर सरकार द्वारा उच्चतम ब्याज दर दी जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को राष्ट्रव्यापी अभियान के फलस्वरूप चलाया गया, जिससे लिंग अनुपात में बहुत सुधार दर्ज किया गया है। रक्षा और नेतृत्व में भी नारी शक्ति अपना परचम लहरा रही है। इनके लिए सैनिक स्कूल और NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वार खोल दिए गए हैं। पूरे भारत में लगभग 1500 लड़कियां सैनिक स्कूल में पढ़ रही हैं। स्थायी कमीशन में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन की मंजूरी दे दी गई है, जिससे वे अब युद्ध और नेतृत्व भूमिकाओं में अग्रसर होकर आ सकेंगी। नौसेना की अग्निपथ योजना में 20% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। पहली बार 75वें गणतंत्र दिवस पर महिला जलसेना, थलसेना और वायुसेना ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया, यह अत्यंत ही गौरव का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व 2 महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने किया। ये नए भारत की बेहद खूबसूरत तस्वीर है। भारत की महिला एथलीट देश के खेल इतिहास में नया अध्याय लिख रही हैं। स्पोर्ट्स फॉर वुमेन के तहत 8000 से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। 2022 राष्ट्रमंडल खेल में 61 में से 23 पदक जीते हैं। 2024 ओलंपिक में महिलाओं ने 6 में से 2 पदक और पैरा ओलंपिक में 29 में से 11 पदक जीते हैं, जो अत्यंत हर्ष का विषय है। वाइस किरण योजना के तहत 2153 महिला वैज्ञानिकों को सशक्त किया गया है। 2014-15 से 2021-22 के बीच महिला PhD का नामांकन दोगुना हो गया।

0: गया है। ये अत्यंत बड़ी उपलब्धि है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन में 50 से अधिक महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतीकात्मक और वास्तविक रूप से भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का ऐतिहासिक चुनाव मील का पत्थर है, जो समानता और प्रतिनिधित्व का परिचायक है। किसी ने क्या खूब कहा था कि एक कदम मानवता की ओर कई मील लंबे सफर की शुरुआत होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से आज महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई है और प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के नए आयाम छू रही है। चाहे वह रसोई की कलछी हो या कलम, दोनों की जिम्मेदारी वह अपने हाथों से संभाल रही है। वह अंतरिक्ष तक ऊंची उड़ान भर रही, जब देश की आधी आबादी भी शेष आधी आबादी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और विकासशील देश से विकसित की ओर हम बहुत तेज कदमों से पहुंचेंगे। अब इन पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नारी है एक, रूप है अनेक, साहस, धैर्य, विवेक की है प्रतिमूर्ति, है जननी, करुणा और दया की देवी, देती है साथ, करती है सहयोग, दो दो कुलों का मान है नारी, ईश्वर का दिया वरदान है नारी, समझो न उसे अबला और बेचारी, अब है वो सशक्त भारत की सशक्त नारी, है प्रधान सेवक संरक्षक हमारा, गूंजेगा सर्वत्र यही नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद।
1: सखियां अभी सुन रही थी वार्ता। वार्ता का विषय सरकार के 12 वर्ष और नारी वंदन। वार्ताकार थी शिखा बर्मन।
2: जी कंचन जी, सरकार ने बहुत सारे ऐसे योजनाएं चलाई हैं और हम सबको भी अपने उत्थान के लिए स्वयं भी प्रयास करना होगा। और बहुत अच्छी वार्ता रही शिखा जी की, हमारी सखियों ने जरूर सुनी होगी। और अब हम कार्यक्रम में क्या सुनवाएंगे
1: भाई मंजरी? साड़ी पहनना तो हम सभी को पसंद है
2: जी,
1: ना?
2: बिल्कुल।
1: साड़ी में हम लोग अच्छे भी लगते हैं और अलग अलग तरह की साड़ियाँ होती हैं, तो उन साड़ियों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए और हर तरह की साड़ी का रख रखाव और देखभाल और उसको पहनने का जो तरीका होता है ना, वो भी अलग होता है।
2: बिल्कुल।
1: तो आज हम बात करेंगे सिल्क की साड़ियों का रख रखाव, यानी कि हम सिल्क की साड़ियाँ पहनना तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसका जो रख रखाव होता है, उसे हम किस तरह से इस्तेमाल करें और किस तरह के कपड़े में उसे रखें, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे तो कई बार हमारी महंगी से महंगी सिल्क की साड़ियाँ खराब हो जाती हैं, है ना?
2: जी बिल्कुल। हमारी सखियों की एक आदत होती है ना कि वो कहते हैं सबको बराबर तौलना, तो वो हर कपड़े को एक ही जैसा समझ के यूज कर लेती हैं, वैसे ही धो देती हैं, और फिर पता चलता है कि अरे मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब हो गई। लेकिन जिम्मेदार भी तो हम ही है ना, तो अगर साड़ी सिल्क की है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ना कि कभी भी उसे घर में, जैसे हम लिक्विड डिटर्जेंट में धो देते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, ये सब काम नहीं करना चाहिए। उसे ड्राई क्लीन करना ही सबसे बेस्ट तरीका होता है, खासकर उस पर जब जरी का काम हो तब तो उसे ड्राई क्लीन करना ही चाहिए।
1: और अगर आप घर में भी अगर धुलना चाहते हैं तो आपने अगर उसको खरीदा है, पहली बार आप पहन रहे हैं और अगर आप पहले ही वॉश घर में कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा रंग को लेकर के परेशानी हो सकती है, रंग निकल सकता है।
2: नॉर्मल जो डिटर्जेंट होते हैं उनका प्रयोग
1: नहीं करना चाहिए। और पहला जो वॉश होता है वो कोशिश करके ठंडे पानी का ही वॉश, पहली बार आप ठंडे पानी में ही धोएं, और कोई भी डिटर्जेंट, कोई भी लिक्विड आप इस्तेमाल ना ही करें तो ज्यादा अच्छा।
2: स्पेशली सिल्क के लिए भी ना कंचन जी, लिक्विड आता है जो सिल्क के लिए स्पेशली, जैसे वुलन के लिए होता है, सिल्क के लिए भी होता है, तो हमारी सखियां उसका प्रयोग करें, या कोई माइल्ड सा बेबी शैम्पू यूज कर सकती हैं जिससे कि कलर नहीं जाएगा। और एक आदत होती है ना, हर कपड़े को रगड़ के साफ नहीं करना है, क्योंकि सिल्क वैसे ही बड़ा नाजुक सा होता है, तो उसे अगर आप थोड़ा पर्याप्त समय लेके भिंगा देंगी अच्छे लिक्विड में, तो वो अपने आप ही उसकी जो गंदगी है साफ हो जाएगी। तो उसे रगड़ना नहीं है और उसको धोने के बाद निचोड़ना भी नहीं है।
1: और सबसे बड़ी बात कि इसको छाया में ही सुखाएं और हैंगर का इस्तेमाल करें। जैसे हम उसको एक के ऊपर एक करके ऐसे डाल देते हैं ना, तो ये नुकसानदायक हो सकता है कि ऊपर का जो कलर है वो आपके नीचे की साड़ियों में या दूसरे कलर पर चढ़ जाए, तो ऐसे में आपको हैंगर का इस्तेमाल करना है। और रेशम की जो साड़ियां होती हैं उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं जब भी आप उसे रखेंगे, और काफी दिन तक रखे हो गया, जैसे 1 महीना बीत गया या 2 महीना बीत गया, तो आपको ध्यान रखना है कि बीच बीच में उन्हें खोलना है और उनकी तह को बदलना है, यानी
2: जी
1: जिस तरह हमने उसे

0: फोल्ड करके रखा है उसे आप उल्टी तरफ फोल्ड कर सकते हैं या दूसरी क्लिच में फोल्ड कर सकते हैं।
1: जी
0: इससे क्या होगा कि उसमें कीड़े लगते हैं ना, अक्सर बोला जाता है कि जो अच्छी सिल्क होती है उसमें छोटे छोटे कीड़े या
1: जी
0: बैक्टीरिया टाइप का, उसमें हवा का संपर्क नहीं होगा तो लग जाएंगे। तो जब आप उसे खोलेंगे तो उसमें हवा लगेगी जिससे वो कपड़े में कीड़े लगने की संभावना भी नहीं होती है।
1: जी और जब उसे प्रेस करें ना, तो हमेशा आजकल के तो जो मॉडर्न प्रेस होते हैं, जो आयरन होता है, उसमें एक सेटिंग भी होती है कि कौन से कपड़े को कौन से टेम्परेचर पे सेट करना है। तो बहुत ही, या तो बहुत ही वैसा है तो वो ऑप्शन यूज़ करें, या तो बहुत ही हल्की आंच रहे तभी करें। और सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर ये सिल्क की साड़ी है तो उसके ऊपर कोई सूती कपड़ा बिछा लिया, और उस सूती कपड़े पे अगर हम प्रेस करेंगे तो नीचे की साड़ी भी प्रेस हो जाएगी, जलने का डर नहीं रहेगा।
0: हाँ।

0: फोल्ड करके रखा है उसे आप उल्टी तरफ फोल्ड कर सकते हैं या दूसरी क्लिच में फोल्ड कर सकते हैं।
1: जी
0: इससे क्या होगा कि उसमें कीड़े लगते हैं ना, अक्सर बोला जाता है कि जो अच्छी सिल्क होती है उसमें छोटे छोटे कीड़े या
1: जी
0: बैक्टीरिया टाइप का, उसमें हवा का संपर्क नहीं होगा तो लग जाएंगे। तो जब आप उसे खोलेंगे तो उसमें हवा लगेगी जिससे वो कपड़े में कीड़े लगने की संभावना भी नहीं होती है।
1: जी और जब उसे प्रेस करें ना, तो हमेशा आजकल के तो जो मॉडर्न प्रेस होते हैं, जो आयरन होता है, उसमें एक सेटिंग भी होती है कि कौन से कपड़े को कौन से टेम्परेचर पे सेट करना है। तो बहुत ही, या तो बहुत ही वैसा है तो वो ऑप्शन यूज़ करें, या तो बहुत ही हल्की आंच रहे तभी करें। और सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर ये सिल्क की साड़ी है तो उसके ऊपर कोई सूती कपड़ा बिछा लिया, और उस सूती कपड़े पे अगर हम प्रेस करेंगे तो नीचे की साड़ी भी प्रेस हो जाएगी, जलने का डर नहीं रहेगा।
0: हाँ, और जब आप इसको रखें, यानी कि आप इसको रख रहे हैं साफ सुथरा होके आ गया, तो आप इसके किसी भी बैग में किसी भी थैले में नहीं रखें। कोशिश करें कि वो मलमल का थैला हो,
1: जी
0: और अगर मलमल का थैला नहीं भी है तो अच्छा पतला कॉटन जिसमें आप उसको लपेट करके अच्छे से रखें, जिससे वो काफी टाइम तक वैसे ही साफ सुथरा और अच्छा बना रहेगा।
1: जी और बहुत सारी बातचीत हो गई सखियों से साड़ी के बारे में कंचन जी, तो अब कार्यक्रम में चलने का समय भी हो ही गया है, लेकिन चलने से पहले क्यों ना सखियों को एक गीत भी सुना दिया जाए।
0: तो चलिए सुनते हैं।

0: तो सखियों सुंदर सी साड़ी पहनिए, खूब सजिए सवरिए और हमेशा मुस्कुराती रहिए। अब आज का कार्यक्रम मुस्कुराते हुए हम आपसे अनुमति मांगते हैं और आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी सखी मंजरी
1: और कंचन को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
4: गृह लक्ष्मी।
5: महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत। इस कार्यक्रम में कलाकार हैं धर्मेंद्र प्रसाद। पहले सुनिए इनके स्वर में एक यात्रा गीत।

0: Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds centre's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया, पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
2: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, जागरूक स्क्रीनिंग करके समय रह के रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्र

0: करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
0: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके

0: डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
3: Our position on Indus Water Treaty is well known.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता रहा हो।
3: Untouched by the profound changes of the past 6 decades.
0: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में

0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।
2: एक ही कलाकार कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त पूजा। और दोस्तों, आज मेरे साथ इस स्टूडियो की हवाओं में एक अलग ही सादगी है। आज का हमारा सफर उस अदाकारा के नाम है जिनकी मुस्कान में सुबह की पहली किरण थी और जिनकी आंखों में सागर सी गहराई। आज के एक ही कलाकार में बात होगी नूतन की।

दोस्तों वो दौर जब हीरोइनें सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए होती थीं। नूतन ने अपनी एक्टिंग से उस धारणा को जड़ से उखाड़ फेंका। 1950 में हमारी बेटी से शुरू हुआ यह सफर बंदनी और सुजाता जैसी फिल्मों तक कैसे पहुंचा, जहां शब्द कम और खामोशियां ज्यादा बोलती थीं।

वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज नूतन जी की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं करियर की शुरुआत में नूतन को दुबली पतली कहकर काफी रिजेक्ट किया गया था। यहाँ तक कि उनकी माँ शोभना समर्थ ने उन्हें निखारने के लिए स्विट्जरलैंड पढ़ने भेज दिया। जब वो वापस आई तो एक बदला हुआ व्यक्तित्व साथ लाई। नूतन सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक इमोशन थी। फिल्म सीमा के लिए जब उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर मिला तो दुनिया ने माना कि ये लड़की सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए आई है। उनकी सबसे बड़ी खूबी, वो कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं करती थी, वो उस किरदार को जीती थी। चाहे वो पेइंग गेस्ट की चुलबुली लड़की हो या अनाड़ी की सीधी सादी आरती।

दोस्तों, अगर नूतन की बात हो और बिमल रॉय की फिल्मों का जिक्र न हो तो बात अधूरी है। सुजाता और बंदिनी, इन दो फिल्मों ने नूतन को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां आज भी पहुंचना किसी भी एक्टर का सपना होता है। बंदिनी की वो कल्याणी याद है आपको, जो जेल की कोठरी में बैठी अपनी किस्मत और मोहब्बत के बीच झूल रही है, बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपनी नजरों से दर्द बयां कर देना। ये हुनर सिर्फ नूतन के पास था। और जानते हैं, वो एक बेहतरीन सिंगर भी थी। उन्होंने अपनी फिल्म छबीली में खुद गाना गाया था। टैलेंट का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है।

नूतन जी ने दोस्तों हमें सिखाया कि ग्रेस और डिग्निटी के साथ कैसे जिया जाता है। उन्होंने रिकॉर्ड 5 बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जो दशकों तक एक रिकॉर्ड रहा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन सरस्वती चंद्र की कुमुद बनकर या मैं तुलसी तेरे आंगन की संजीदा माँ बनकर वो हमेशा जिंदा रहेंगी। कि चेहरे तो बहुत आए पर वो सादगी फिर कभी नहीं दिखी।

आज के इस एक ही कलाकार के सफर में हमने नूतन जी की उन खामोश नजरों और उस सादगी को फिर से जिया जो आज के शोर शराबे वाले सिनेमा में कहीं खो सी गई है। अब बस इतना ही कहूंगी कि कलाकार चले जाते हैं, पर उनकी कला, उनकी वो मुस्कान और वो संजीदगी वक्त के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है।

0: नूतन जी ने साबित किया कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं, आपके काम और आपकी डिग्निटी में होती है। उम्मीद है आज का ये एक ही कलाकार कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आपके दिल के किसी कोने को छू गया होगा। इसी विश्वास के साथ अब लेती हूँ आपसे विदा। अपना ख्याल रखिए, अपनों से बातें करते रहिए और सुनते रहिए विविध भारती वाराणसी FM। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये प्रोग्राम अभिनेत्री नूतन पर केंद्रित था। प्रस्तुति पूजा सिंह की थी।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज शाम 5:10 से आप सुन सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम वेव्स, ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR ऐप DTADRM और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। यह है कार्यक्रम का पहला गाना, ये आवाज लता मंगेशकर की। कर्तव्य फिल्म का गाना वर्मा मलिक के

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे बर्मा मलिक की रचना। यह आवाज थी लता मंगेशकर की और कर्तव्य फिल्म का गाना था। आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए ये गीत, बहुत प्यारा सा गीत, आशा भोसले की आवाज। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम समाधि।

आशा भोसले की आवाज़ में समाधि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे मंजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे आरडी बर्मन। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया इस वाद्य संगीत के साथ प्रतीक्षा करें।

0: दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चले।
1: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी

0: सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
1: Yeah, the Prime Minister has arrived already is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he's having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that he'll be coming over here in a short while he'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about, about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it will be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
0: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
1: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs. And the total budget is for this is about 99,446 crores.
0: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
1: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क, व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार। व्हाट अ एनकरेजमेंट टू द पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस। एंड देन द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इज फ्रॉम ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम्स up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through, for getting the number. And 99.68% of UANs have been generated. It is a universal account number.
0: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डाले तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी, और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में। और हाँ बोलो। इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें, उस पर एक नजर डालें, तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके, और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है, और आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है। तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हो, और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार

0: कार्य अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
1: पीपल विल फील सिक्योर, ओके द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट, सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, बट लेट दिस प्राइम मिनिस्टर इज गिवन देम एन अश्योरेंस दैट द गवर्नमेंट इज देयर विद यू, दैट इज व्हाट ही सेज इन दिस मोटो, नो रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार
0: जी। और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे। और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी।
1: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure, split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli baar naukri mili
0: hai.
1: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments, using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible. And even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
0: बिल्कुल सभी को फायदा है, बिल्कुल फायदा है। और आर्थिक विकास ने विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी। और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: See, and then one more thing. See, the Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Mela, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service Portal. That is a National Career Service India to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
0: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा। कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि

0: आपके पास पहुंच गए हैं, तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं, और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन सहमति के साथ, नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: That's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025, started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years.
0: Hmm.
1: But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is extendable up to a period of 4 years.
0: Hmm.
1: Benefits are applicable up to a period of 4 years.
0: 4 years.
1: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization. It is a strength of 7.99 crore members. And then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
0: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
1: एटमॉस्फेयर इज रियली फैंटास्टिक, इज रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज़ सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आपको देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
1: And our Prime Minister has always put a lot of stress on the youth, you know, the youth of this country, because they are the future pillars. They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment. None of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained, and the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive, he's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
1: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now. And already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and the total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि 2 किस्तों में मिलेगी, और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
1: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make

0: make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers, and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course, it is always on the for the development of the country.
1: ESIC ka Bharta Suraksha evam Swasthya Network 3.24 crore plus bimit vyakti panjikrit aur 14.91 crore plus labhartiyon tak pahunch aur 728 zilon mein sevayein uplabdh aur sabhi ke liye jo mahatvapurn hai wo hai samajik suraksha.
0: Yes.
1: Ye bahut zaruri hai. Pradhanmantri Viksit Bharat Rozgar Yojana bahut hi aisi yojana jisse sabhi ko fayda hai.
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now and of course internationally the world India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: चार श्रम संहिताएं लागू मजदूरी संहिता 2019 सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020 29 श्रम कानूनों का एकीकरण सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम पारदर्शी कुशल और डिजिटल प्रणाली और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी
0: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन यू नो द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस प्रीति इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस यू नो जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, almost 700 people are seated over here, right up to the top.
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है
0: नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी पीपल आर दे ऑल सी दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स दे ऑल कीपिंग द फोन्स रेडी ऑन द टेबल सो एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन इट विल कम टू द फोन दैट दे हैव गॉट द लेटर
1: An amount will be transferred.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो नहीं
0: yeah.
1: आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है ये कह
0: yes.
1: सकते हैं
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, the payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account.

0: That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुनानी और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके ही इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट that I'm getting a job and a prime minister has given this job to me. So and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up and I think they're all looking towards the door. I'm sure the prime minister is about to arrive, and once he arrives, then the other deliberations will take place. The union minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the... short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button, the magic button.
1: Magic button.
0: Yeah, the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top. And his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र है जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister and on the left by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board, on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना

0: always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they've generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड जो तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी, और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती है, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया. नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
0: So, in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and is saying, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and. It's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it'll be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: Hmm.
0: Yeah.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
0: yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं.
0: Yeah, I think everything has stopped. They are all in attention, and I think the Prime Minister is arriving with other dignitaries. He'll be taking his seat on the dais, and once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet by one of the beneficiaries. That'll be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student. Who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, as he's arrived, he has entered, and he's entered, and he's walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: Duniya ke sabse lokpriya neta, mananiya Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji ka.
1: Ek baar zordaar taaliyan ho jaye.
2: Deviyon aur sajjanon, taaliyon ki gadgadahat rukni nahi chahiye.
1: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविय जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का.
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें.
1: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
1: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन.
0: द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड, ही हैज टेकन हिज सीट ऑन द डेस्क.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
0: फ्लैंक बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑन हिज राइट एंड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट टू हिज लेफ्ट.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामणि डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें. एक बार जोरदार तालियां.
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने.
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है, और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है. यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है.

0: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
1: जोरदार तालियां हो जाए।
2: श्री मनसुख मांडविया, द मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, he walks to the podium to give a speech.
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी। उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज को वर्ष में 1 बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर

0: क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। एक क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है। और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए फिर सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर कुछ एक पलों में, है ना?
2: Screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana.
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधान

0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
1: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
0: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000

0: इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
1: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
3: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana, and that was a short film. And now, very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously, and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
2: स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
3: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
4: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
2: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
4: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
2: डाइस पर
5: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा भी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़े युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं।

दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान

अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने

सरकार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप

उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल्ड टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। अब इसलिए

मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं, और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी, शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खोलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है।

0: कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदी हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And it says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said,
2: माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इन प्रेरणादायी शब्दों ने आज यहाँ उपस्थित हर एम्प्लॉई के मन को नया गौरव दिया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू? और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
3: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रियो।
4: आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, आइए सुने किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: बच्चो राम राम सुद्धू भैया।
1: हाँ भैया।
0: अरे कह कुल अपन खरीफ के का तैयारी कर लेला हो?
1: सत्तू भैया देखा जोन पहले तो तैयारी होला अपने मुख्य फसल का जल्ला ना, और ओकर तैयारी ई बा कि देखा अब बिया कुछ तो डालू देले है, कुछ डाले का और तैयारी बा,
0: अच्छा।
1: जैसे पानी के सुतार बैठत हो है ना भाई, व्यवस्था करे के बा।
0: बिल्कुल भाई देखो।
1: तो मुख्य बात तो मुख्य फसल का भी बा, और ओकरे साथे साथे भाई देखा हमहन जोन परंपरागत खेती करत चल आवत है, गेहूं भैल, चाउर भैल, दलहन।

0: संभल है ना। एकरे साथ साथ अब जौन तकनीकी परिवर्तन भेल हो और वैज्ञानिक परिवर्तन भेल हो अपने खेती किसानी में, ओकरे हिसाब से ई बा कि ओकरे साथ साथ कदम मिला के चलना जरूरी हो।
1: बिल्कुल, अगर कदम मिला के चलत है जाना तो ये जान ला भैया कि आवे वाला समय में या आजे या यही समय देखो व्यवसाय की तरफ बढ़ सके नहीं जा। व्यवसाय से हमारा तात्पर्य कहे कही है कि भाई दो पैसा का अतिरिक्त आमदनी कर सके नहीं जा। जैसे कि जो उन खरीफ का तू मुख्य फसल का बात करत रहला ना, अपने धान का या धान के बेहन का बात करत रहला, तो देखो धनों में ना कई किस्म का चावल आ गई है और ओकर बाजार में भाव इतना बढ़िया है कि अगर वो व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर हमनी का ओकर खेती करत है यहाँ शुद्ध भैया, तो ये जान लो कि हमनी के आम जोन पहले पारंपरिक जोन धान का खेती होत रहा उससे कई गुना ज़्यादा लाभ हुई और बढ़िया ओकर स्वाद भी है और बाजार में ओकर मांग भी है। और ओकरी अलावा अगर अपने खेते में वो चाहे खरीफ का फसल हो चाहे रबी का फसल हो या जायद का फसल हो, देखो तमाम तरीके का आधुनिक खेती होत है, आधुनिक बीज आवत है, जैसे कि अपन वैज्ञानिक भैया लोग बतावेला लोग भी कि देखा हाँ एकर हे वाली बीज के आविष्कार भैया, एकर उत्पादन ज्यादा है, एकर उत्पादन और इससे बेहतरीन है, तो देखो ओके हमने के पढ़े के हुई, जाने के हुई, समझे के हुई और वही के कहल जाओ कि ओकरी पीछे पीछे लग के चाहे वही के ढर्रा पर पीछे लग के वो हमने के व्यवसायिक खेती के अपनावे के हुई भैया।
0: सत्तू भैया, देखा व्यवसायिक खेती के जहाँ तक बात हो ना, तो व्यवसायिक खेती का मतलब कि ये जो मुख्य फसल से हट के कुछ ऐसा खेती करे के हो जौने से कि नगदी मिले, जानला ना। अब जैसे देखा गन्ना के खेती भैया लोग कैले हुआ, मशरूम के खेती करत हुआ है ना, ये सब देखा नगदी फसल हो, जानला। और एकरे साथ साथ बहुत सा ऐसा समझ ला औषधीय पौधा का भी खेती लोग करत हुआ ना, जैसे कि बाजारे में जाए के 4 पैसा अतिरिक्त आमदनी होत हो।
1: अरे आई देखो
0: फूल का खेती देखा कितना भैया लोग करत
1: और
0: हो, अब
1: लोग
0: कितनी मांग हो बाजार में।
1: बिल्कुल और हर कहल जाओ कि कोनो तुहरी घर में कार्यक्रम हो खुशी का देखते बड़ा कुल लोगन का बर्थडे मनत है चाहे तमाम कोनो कार्यक्रम होता
0: अरे हम
1: उनमें
0: कई जन्म से लेके मृत्यु तक यहाँ तक कि देखा आरती पर भी देखा माला पहरावल जाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ
1: और हर जगह ओकर मांग है। आ संगे संगे देखे वो लोग एलोवेरा का खेती करत हूँ आ
0: हाँ
1: देखो ओकर कितना मांग है बाजार में, वो
0: बिल्कुल
1: चाहे दवाई होखो चाहे कहल जाओ कि चेहरा पर लगावे खातिर होखो चाहे हर जगह है, तो देखो एक कुल के अपनावे के हुई। और संगे संगे एक और चीज़ हम कह कि देखो सब्जी में भी बहुत व्यवसायिक है ऐसा कि जोड़ा से नगदी पैसा हमनी के कमा सके नहीं। जैसे देखो अपने आसपास के क्षेत्र में मिर्चा का खेती भाई, तो देखो ओहू का भी हमनी के व्यवसायिक दृष्टिकोण से ओके भी रख सके नहीं जा। मशरूम का उत्पादन भइल
0: बिल्कुल। अरे बड़ी नई नई चीज आ गई हो, देखा राजेश भैया खेती कैले हुआ ड्रैगन फ्रूट का,
1: अच्छा
0: हम तो कहीं भैया बतावा लगन, हम तो नाव है ना सुन ले रही है और लेके आल रहे ना जूठे, कहें देखा भैया एक ड्रैगन फ्रूट यही से नाव हो के एक मुंह जौन है ना ड्रैगन के तरह हो, डरावना बा,
1: अच्छा
0: बाकी स्वाद बढ़िया रहा हो और बड़े ताकत का चीज रहा। कहे का मतलब ये नई नई चीज दिखाई जो बाजार में आ गई, स्ट्रॉबेरी का खेती
1: हाँ
0: जल्ला ना, पहले देखा यार अपने उरी ना हुए, अब भैया लोग करत हुआ वो तरह के तापमान के अनुकूल जो आवत हो बीज वो के लगावत हुआ, बढ़िया उत्पादन करत हुआ, बढ़िया पैसा कमात हुआ।
1: बिल्कुल
0: कहे का मतलब यह हो कि तरह तरह का ओके जोन हो विधि अपनावे के पड़ी और सोचे के पड़ी उपमन कि भाई और काका हम करी जोन अपने एहर क्षेत्र में हो सकला है ना। अब यही कारण से अब हर मौसम में देखा हर चीज मिलत हो,
1: हाँ हाँ
0: जानला
1: एकदम
0: ना। पहले तो भाई जोहे के होए कि
1: अरे
0: अरे भाई अब जाड़ा आवे तो देखा मटर का घुगनी बने।
1: अरे भैया केले का देख ल कि जब ओकर मौसम आवे तो यूके कि चलो बाजार में केला आ गई है आए अब केला खरीदे के है, लेकिन अब देखो बारहमासी केला मिलत है
0: बिल्कुल
1: आ यूके खेती अगर करल जाओ तो कितना बढ़िया उत्पादन यू में है।
0: बिल्कुल। तो भैया देखा एमन अपने सोच के बढ़ावे की जरूरत हो जानला ना, और ए पर विशेष रूप से चिंतन करे के जरूरत हो और थोड़ा सतर्क हो जाए के जरूरत हो, खास करके अपने माटी के प्रति। अपने माटी का जौन हो देखा आजकल तो AI तकनीक भी आ गई हो कि ओकरे माध्यम से पता चल जाए कि तुहरे माटी में कौने कौने चीज का कमी हो, कौने कौने चीज का अधिकता बा, कौने का प्रयोग करे के हो, कितना मात्रा में करे के हो, संतुलित मात्रा भी बता दी है। और
1: बिल्कुल
0: ओकरे साथ साथ देखा सिंचाई के तकनीकी जानत हुआ, अगर केहू विदेश में बैठल बा ना वहां से अपन इस सिंचाई का संयंत्र जो यहाँ लगौले बा ओके जब चाहे तब चलाए दी, जब चाहे तब बंद कर दी,
1: बिल्कुल
0: जल्ला।
1: भाई सुद्धू भैया ये जान ला कि जब अपने खेती में ना सबको समायोजन होला, सबको समायोजन से हमारा तात्पर्य ये है कि चाहे वो अपन मिट्टी हो या अपन कहल जाओ कि पानी का सुविधा हो चाहे

0: अपने औजार का सुविधा हो, सब अगर सुविधा से देखल जाओ के जोड़ के ना, तबे देखो दो पैसा आमदनी को बढ़िया से खेती हो सकेला।
1: बिल्कुल
0: और जब सब सुविधा के कहल जाओ कि समायोजित कर जाए, तो देखो बढ़िया हमने के उत्पादन होई और दो पैसा लाभ भी होई।
1: बिल्कुल सही कहत हुआ। तो हे देखा, हम कही कि बतकही तो हम कैली, अभी आगे खेती किसानी का और बतकही हुई, बाकी तो पहले ही सने सुनवा दे पंच भैया लोगन के,
0: बिल्कुल
1: फिर
0: सुनवा दे।
1: बतकही हो।
2: हमारी जनगणना,
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
7: 0542227658।
4: 0542227658।
5: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
8: दस लाख की लॉटरी मुझे,
9: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
10: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: सत्तू भैया।
0: हाँ भैया।
1: भाई देखा इत पंच भैया लोग सुन लेना सनेश। अब अपने खेती बारी में देखा हमन बात करत रही है नई जो व्यावसायिक खेती हो के विषय में, तो इमन देखा जो समय समय पर सुनवावल जाला अपने जो किसी विज्ञानी भैया लोग होने ना,
0: बात
1: भाई नई नई बात बतावन। तो आज देखा जो बीज प्रौद्योगिकी हो एकर का महत्व अपने खेती बारी में हो, डॉक्टर अर्चना सान्याल से हम कही कि तो ही बतियावा, हम छुपाए जाते
0: एकदम भैया, हम बतिया लेते हैं, तनी सा हट जा मैडम के बैठे।
11: आज हमने लोन के बीच में आयल हैं डॉक्टर अर्चना सान्याल जी, जे कि वैज्ञानिक है भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र सहनसापुर जखनी वाराणसी में। आज हमने लोग इनसे जानल जाए कि बीज प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है अपने खेती में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर मैडम आपका हमने के कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
12: धन्यवाद, और सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम।
11: तो जैसन कि आज हमने के विषय है कि बीज प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, तो सबसे पहले ये बताएं कि बीज प्रौद्योगिकी होला का चीज।
12: देखिए जो कृषि उत्पादन की पूरी प्रक्रिया है वो बीज से ही प्रारंभ होती है। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे पुराणों में भी एक श्लोक है कि सुबीजम सुक्षेत्रे जायते तत्र संपद्यते, मतलब अगर अच्छा बीज अच्छी धरती पे जाएगा तो बहुतायत में उसका उत्पादन होता है। तो विज्ञान की यही एक शाखा है जिसमें कि हम बीजों के उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण, भंडारण और वितरण की जो उन्नत विधियां हैं उनका अध्ययन करते हैं, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों तक प्रामाणिक और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को उपलब्ध कराना है।
11: तो अच्छा ये हमने ये खेती में महत्वपूर्ण काहे हो जाता है इस समय?
12: देखिए क्या होता है कि जो अगर आप बुआई करते हैं, किसान बुआई करने जाते हैं, तो उस समय अगर वो उनके जो बीज हैं जो कि एक आधारशिला है उत्पादन की, अगर उन बीजों को अच्छे तरीके से वो बोएंगे नहीं या अच्छे बीजों का या अच्छी किस्मों का चुनाव नहीं करेंगे तो सीधा सीधा जो फर्क है वो उनके उत्पादन पे पड़ता है। कहीं ना कहीं उनकी लागत भी ज्यादा लग जाएगी और उत्पादन कम होगा तो वो उसका प्रभाव नहीं झेल पाते हैं।
11: तो ये बताएं आप तो सब्जी अनुसंधान केंद्र से वानी, तो सबसे पहले तो हमारे किसान भी उनको बताएं जे इस समय सब्जी लगावत है या है जे लगैले है या आगे भी जे लगाई, तो वो लोग अपनी सब्जी का जो बीज है ओकर कैसे रख रखाव करें और ओकर कैसे कह लो कि देखभाल लोग करें।
12: हाँ देखिए मैं थोड़ी चर्चा इस पे भी करना चाहूंगी कि जो सब्जी के बीज होते हैं ना, वो थोड़ा उनका जो उत्पादन होता है और उनका जो रख रखाव होता है ना, बाकी फसलों से थोड़ा अलग होता है।
0: अच्छा।
12: क्योंकि क्या होता है कि ये विटामिन्स, ये खनिज, फाइबर, इन सब के एंटीऑक्सीडेंट के प्रचुर मात्रा में इनमें पाई जाती है, लेकिन जो उत्पादन तकनीकी होती है वो थोड़ा अलग होती है। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जी होती है वो अन्य फसलों से ज्यादा संवेदनशील होती है, इसके अपेक्षाकृत इनमें जो लागत होती है वो भी ज्यादा लगती है। जैसा कि आपको पता होगा, इनमें जो निराई होती है, गुड़ाई

0: होती है लगातार चलती रहती है, मतलब जो कृषि की क्रियाकलाप होती हैं
1: हाँ
0: वो ज़्यादा लगती हैं, इस वजह से क्या इनकी लागत ज़्यादा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो गुणवत्ता का जो असर है सीधे सीधे इनमें जो बाजार का जो मूल्य है उस पर प्रभाव पड़ जाता है। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी, भिंडी, ऐसी सब्जियां जिनमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग और उत्पादन जो है गुणवत्ता दोनों को इनके बढ़ा देता है। और आपने जैसा बोला कि बीजों का रख रखाव कैसे करें, तो देखिए पहले जो बीज होते हैं उन बीजों को हमेशा कम नमी वाली, जहाँ आर्द्रता कम हो और तापमान भी ज़्यादा ना हो, वैसी जगहों पर रखें। यहीं पर कहीं ना कहीं किसान भाई जो लोग होते हैं वो उनसे कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और बीजों का जो भंडारण है वो सही से नहीं हो पाता। और वो भी मैं जैसा बताऊं कि इसकी भी जो तकनीकी है वो हम जो बीज प्रौद्योगिकी है उसके अंतर्गत ही इसको अभी अध्ययन करते हैं।
1: तो इन तकनीकी के बारे में बताएं कि लोग अपन जो बीज उत्पादन करते हों उनमें कौन तकनीकी का ध्यान रखा या कौन तकनीकी अपनावा।
0: हाँ जी, देखिए क्या होता है कि जो बीज उत्पादन होते हैं उसमें विशेष सावधानी हम रखते हैं और ये समय समय पर अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे कि जब हम किस्मों को लगाते हैं, विभिन्न किस्मों को लगाते हैं, तो उनकी जो अनुवांशिक शुद्धता होती है उसको बनाए रखने के लिए हमें हमेशा विभिन्न किस्मों को एक उचित दूरी पर लगाना चाहिए,
1: अच्छा
0: ताकि कहीं गलती से भी एक किस्म का जो परागण है किसी दूसरे किस्म के फूलों को परागित ना कर पाए। इससे क्या होगा कि जो अनुवांशिक शुद्धता है वो उनकी बनी रहेगी, इस वजह से हम उनके अलगाव दूरी का उपयोग करते हैं। दूसरा आता है कि हम रोगिंग करें, जब बीजों को लगा दिया जाता है उनसे पौधे बन जाते हैं, तब भी आप देखोगे, मान लो कि आपने बीज किसी किस्म का लिया लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी अवस्था में ऐसा लगा कि नहीं ये कुछ अलग है, ये
1: अच्छा
0: पौधा बाकी पौधों से अलग लग रहा है, तो उस समय उसकी जो विशुद्धियां हैं उनको हमें अलग करना पड़ता है। तो इसी को हम रॉगिंग कहते हैं। और साथ साथ में जो परागण नियंत्रण जो है सही समय पर करना चाहिए, ये जो संकरित जिसे हम हाइब्रिड बीज कहते हैं उनके उत्पादन में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। हाँ
1: हाइब्रिड बीज के बारे में जो आप बताओ थे तो एकर का योगदान है अपने खेती किसानी में।
0: हाँ बिल्कुल, आपने सही एक तरह से प्रश्न किया। किसान भाइयों देखिए, जो सब्जी फसलें होती हैं ना, इनमें हाइब्रिड बीजों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। और इसकी दो जनरली जो ज्यादातर क्या होता है कि ये जो हाइब्रिड बीज होते हैं दो अलग अलग अभिभावक किस्मों के संकरण से तैयार किए जाते हैं,
1: अच्छा
0: और उनके जो लाभ हैं वो ये हैं कि इनसे अत्यधिक उत्पादन मिलता है, इनमें एक तरह की एक रूपता होती है, जैसे
1: एक
0: जो फल
1: रूपता
0: होंगे
1: मतलब।
0: या पौधे होंगे वो एक रूप एक समान होंगे। जैसे आप
1: अच्छा
0: अगर मान लीजिए आप बैंगन का पौधा लगा रहे हैं, लंबा वाला या गोल वाला, अब आप लंबे वाले में भी एक लंबाई होगी ना, जैसे 10 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, तो सारे ही जो फल होंगे वो लगातार एक ही तरह के होंगे, जिससे क्या होगा जब आप इनको मंडी में बेचने जाएंगे तो आपको भाव बहुत अच्छा मिलता है इससे। इसके साथ साथ जो हमारे जो हाइब्रिड होते हैं बीज, संकरित बीज होते हैं, इनमें जो हमारा जो पर्यावरण जो बदल रहा है ये उसके अनुकूल सहनशील भी होते हैं, ठीक है, साथ साथ में कीट पतवार इनसे भी ये सहनशील होते हैं
1: अच्छा
0: और इनका बेहतर आकार होता है, रंग होता है और स्वाद होता है।
1: तो एक मतलब कि बाजार में भी अच्छा मूल्य मिलत हुई।
0: हाँ
1: अच्छा बीज प्रसंस्करण और ही भंडारण के बारे में दिन किसान भैया उनके बताइए आप।
0: जी बिल्कुल, जैसे जब बीज का उत्पादन हो जाता है तो बीजों को हमें उनकी जो भंडारण रखने के लिए उसके लिए तय इनके जो इनमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है,
1: हाँ
0: उसको घटाना पड़ता है ताकि
1: अच्छा
0: हम इसका भंडारण उचित समय के लिए कर सके। जैसे आपको पता है कि अगर एक सीजन में आप किसी सब्जी को उगाते हैं या किसी फसल को उगाते हैं तो अगला सीजन कम से कम 6 से 7 महीने बाद आता है, किसान जो भाई होते हैं उसकी तैयारी करना शुरू करते हैं। तो इस बीच में 6 से 7 महीने के बीच में आपको इसकी जो शुद्धता है साथ साथ में जो इसकी अंकुरण क्षमता है उसको आपको बनाए रखना है। इसके लिए हमें इसका प्रसंस्करण करना पड़ता है, जिसमें से इसमें जो अशुद्धियां हैं, खरपतवार हैं, टूटे हुए बीज हैं या फिर जो छोटे छोटे बीज हो चुके हैं उनको निकालना पड़ता है, और उसके बाद फिर उसका जो हम कहते हैं भंडारण उसको किया जाता
1: अच्छा
0: है।
1: भंडारण कैसे करें लोग, जैसे गांव में तो बहुत लोग क्या करें ना, गेहूं के बीज तो लोग पहले भूसा में रखें या कुछ दवा वगैरह डाल के रखें, सब्जी के बीज बदले वो लोग क्या करें।
0: देखिए सब्जी के बीज जो होते हैं ना, गेहूं और धान के बीजों से कहीं ज़्यादा संवेदनशील होते हैं,
1: जी
0: तो क्या होता है कि इनमें इनका जो भंडारण होता है उसको हम ऐसे सुरक्षित जगह पे करते हैं जहाँ पे नमी बहुत कम हो, नमी के साथ साथ वहाँ का तापमान जो है बहुत ज़्यादा ना हो। और अगर आप किसान भाई अगर ऐसा अगर कोशिश करें कि उसको अंधेरे में रखा जाए, अंधेरे वाली जगह पे जहाँ पे रोशनी ज़्यादा ना पड़ती हो, तो वो एक तरह से उचित तरीके से उसको रखा जा सकता है और उसमें जो उसकी अंकुरण क्षमता है उसको मतलब कि एक समान रखा जा सकता है अगले
1: अच्छा
0: सीजन तक के लिए।
1: कह लो कि बीज परीक्षण का भी कोनो एमए योगदान है। है या उपाय है?
0: हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको

0: पता है कि अगले सीजन में इसकी बुआई करनी है, तो
1: हाँ
0: तब तक के लिए बीजों की जो अंकुरण क्षमता है उसको निर्धारित करने के लिए बीजों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण में क्या होता है कि इनमें अंकुरण प्रतिशत की जांच होती है, उनकी भौतिक शुद्धता की जांच होती है, साथ साथ में इनमें नमी की मात्रा है बढ़ी है या घटी है, और उसमें अगर कोई रोग उपस्थित हो गया हो भंडारण के समय तो उसको भी सुनिश्चित किया जाता है, ताकि जब किसान जो है इन बीजों को खरीदे और अपने जमीन पे लगाए तो उसका जो उत्पादन हो वो बढ़े।
1: इन परीक्षण के बारे में जो घरेलू कुछ उपाय है उतनी अभी भी हमें
0: हाँ,
1: बताएं।
0: ये आपने बहुत ही आप कह सकते हैं अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, मैं एक बीज वैज्ञानिक हूँ, इसके माध्यम से मैं सभी जो किसान भाई हैं उनमें संदेश देना चाहती हूँ कि जो आप बीज खरीदते हैं, आप कहीं से भी खरीद रहे हैं, मार्केट बाजार से खरीद रहे हैं या किसी संस्थान से खरीद रहे हैं या ब्लॉक से खरीद रहे हैं, तो सबसे जो सरल उपाय है बीजों का परीक्षण वो ये है कि आप अपने घर में ही उसका अंकुरण क्षमता जांच लीजिए,
1: अच्छा
0: और उससे पहले जब आप कोई पैकेट खरीदते हैं बीजों का तो उसके पीछे जो है लिखा होता है, प्रिंट होता है कि इसमें जो अंकुरण क्षमता है, सपोज मान लीजिए कि उसमें 80% लिखा है, तो आप क्या करिए घर पे उन बीजों को, आप मान लीजिए कि 80 बीज 100 बीज नहीं लगा सकते, अगर गेहूं और धान के बीज ला रहे हैं तो तुम्हें 100 और 100 बीज लगाए जा सकते हैं, तो आप क्या करिए 100 बीजों को लीजिए, 50-50 में उसको विभाजित कर दीजिए, और उनको अलग अलग, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, अखबार होता है या सादा कागज होता है, तो उनमें इन बीजों को लाइन से उचित दूरी पर, मतलब 2 सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर पर रख के इनको भिगा के अच्छे से रोल कर दीजिए, जैसे मोड़ते हैं ना, पेपर को मोड़ा जाता है ना, उसको मोड़ करके घुमावदार गोल करके उसको कहीं अंधेरे वाली जगह पे रख दें, और उसमें हमेशा नमी को बनाए रखें, आप देखेंगे 7 से 8 दिन बाद सब में अंकुरण होने लगता है।
1: अच्छा
0: वहां से आप पता कर सकते हैं कि जो हमने बीज खरीदा है, हम जिसको हम लगाने जा रहे हैं, क्या उसकी अंकुरण क्षमता उतनी है जितना कि उसके रैपर पे लिखा हुआ है पीछे पैकेट पे।
1: अच्छा
0: इससे क्या होगा, आप सुनिश्चित भी हो जाएंगे, अगर उसमें अंकुरण क्षमता कम आती है तो आप जाकर के दुकानदार से या जहां से ब्लॉक से आप उसकी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, तो
1: अच्छा
0: ये किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
1: ऐसे फायदा क्या क्या रही हमारे किसान भाइयों के, इतनी आप बताएं कहाँ से कि आप वैज्ञानिक मैडम हैं और हमारे किसान भैया लोग सोचे ला या जानल चाहेला कि जो वैज्ञानिक लोग हों उनसे सुनल भी चाहेला कि हमके का का फायदा हुई ऐसे, तो इतनी फायदा के बारे में बताएं।
0: जी, किसानियों के लिए लाभ देखिए, अगर आप उन्नत बीज प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं तो आपको अधिक और स्थिर उत्पादन मिलेगा, बेहतर बाजार का मूल्य मिलेगा, साथ ही साथ आपकी लागत में कमी भी होगी, तो जोखिम में जो है इस कमी भी होती है। और एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सब्जी की जो बीज होती है ना, सब्जी फसलों के बीज होते हैं, उनके माध्यम से न केवल जो उत्पादन बढ़ती है जबकि पोषण की जो सुरक्षा है ना वो भी सुनिश्चित होती है। क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया था इनमें प्रचुर मात्रा में जो खनिज, लवण, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी छुपी हुई भूख है जिसे हम हंगर, हिडन हंगर बोलते हैं, क्योंकि हम पोषण, हम कैलोरी तो लेते हैं धान और गेहूं के माध्यम से, लेकिन जो हमें न्यूट्रिएंट की जो कमी है, पोषक तत्वों की कमी है, वो सब्जियों से ही पूरी हो सकती है। तो ये जो खाद्य सुरक्षा के साथ साथ ये पोषण सुरक्षा को भी मतलब कि एक तरह से सुदृढ़ करते हैं।
1: चलत चलत आप हमारी किसान भी उनके का संदेश दिया चाहो।
0: अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि बीज प्रौद्योगिकी कृषि विकास की रीढ़ है, और विशेष रूप से सब्जी उत्पादन में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि किसानों को सही समय पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध हों तो उनकी आय में वृद्धि के साथ साथ देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा भी मजबूत होगी। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: तो डॉक्टर अर्चना सान्याल जी, आज आप हमने लोन की कार्यक्रम कृषि जगत में नहीं एकरा बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सत्तू भैया
1: हाँ भैया
2: बड़ा नगद के बतियूला भाई, और वैसे जो हो डॉक्टर अर्चना सान्याल बहनी दिखा जो हो जानकारी देनी है ना कि बीज प्रौद्योगिकी का अपने खेती बाड़ी में का महत्व हो।
1: ये भी है।
2: तो हम कही जानकारी के बात तो हो गई।
1: हाँ हो गई, अब हम कहम ना तेन मन मनसाइन
2: अरे
1: होके
2: हम
1: हो।
2: बुझत है तुहार मन भाई पहले से कि हाँ मन मनसाइन तुहार जीव करत हो, तो हम कही कि डॉक्टर माधवी सिंह का गौनई आज पंचायती में हो।
1: बिल्कुल
2: सुन ले पंच।

0: सुधू भैया
1: सत्तू भैया मन मनसायन हो गए हो एकदम।
0: एकदम देशभक्ति गीत ही सुन के ना डॉक्टर माधवी सिंह का देखा कितना
1: मन गदगद हो गल और
0: अपन।
1: हमको चलत चलावत देखा जो काली का कार्यक्रम हो अपने की श्रोता भैया लोगन के बताए दें कि का प्रसारित हुई
0: बिल्कुल बता दो
1: कि
0: भैया।
1: सवेरे 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में देखा भिंडी का खेती विषय पर जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह भैया जल
0: संझा के क्या सुनो बहु।
1: संझा के जो 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम अपन होत हो न मन काल हुई लोक भाषा कवि गोष्ठी का प्रसारण जल एक जो प्रतिभागी कवि लोग हुई है लालजी यादव कमलेश कुमार राय और अनीता कुमारी
0: भाई
1: जल
0: देखा कभी गोष्ठी कभी भैया लोग खूब खूब ध्यान से सुनिए खूब ओकर
1: आनंद
0: मजा
1: नहीं है
0: लिया।
1: कि हाँ
0: आ ये भैया
1: भैया
0: कहम ना कि अब चलत चलत ना अपनी भैया लोन से आज्ञा लिया जाए।
1: अरे बिल्कुल भाई कुल कार्यक्रम हो गल हमके मन मनसान भी हो गल जानकारी के बात हो गल काली के बात बता देवल गल कि का प्रसारित हुए अब तो यह बचल बा कि भाई आज्ञा लेवल जाए।
0: बिल्कुल आज्ञा लिया
1: हाँ
0: जाए
1: तो पंचो
0: तो पंचो राम राम।
1: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आइए सुने फिल्म संगीत, लेकिन इस अंतराल के बाद।
1: देश किसान जनगणना से जन कल्याण
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
0: कार्यक्रम की ये पहली पेशकश, बटवारा फिल्म का गाना।

अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में बटवारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे हसन कमाल और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम का अगला गाना आपके रेडियो सेट पर। लता मंगेशकर की आवाज में गुलशन बावरा के बोल।

जंजीर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम का आखिरी गाना आपके रेडियो सेट पर।

मुकेश की आवाज़ में पुष्पांजलि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हम आपको याद दिलाते चले कि शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर सुनिएगा मनोहर लाल का बांसुरी वादन। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला सुनिएगा रात 8:10 पर। अंजुमन की महफिल सजेगी रात 9:30 पर। रात 8 सुगम संगीत के कलाकार होंगे पंडित सीताराम सिंह। शाम 7:31 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र से प्राप्त सूचना अनुसार रविशंकर पुत्र रामधनी गुप्ता निवासी कहुआ नाला थाना अनपरा जिला सोनभद्र कहीं गुम हो गए हैं। रविशंकर के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 25 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट 3 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। वह चिंता देवी पत्नी महेंद्र कुमार निवासिनी सलहिया डी थाना कोन जिला सोनभद्र कहीं गुम हो गई हैं। चिंता देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 20 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग सांवला और चेहरा गोल है। लापता के समय चिंता देवी ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। इन दोनों खोए हुए व्यक्तियों के बारे में यदि कोई सूचना हो तो इस पते पर दें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र या निकटतम थाने को भी सूचित कर सकते हैं। पता एक बार पुनः सुन लें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सोनभद्र या अपने निकटतम थाने को भी सूचित कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:18 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया इस वाद्य संगीत के साथ प्रतीक्षा करें।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, SIT की जांच सामने आएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरी SME कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक MSME इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदले। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। यह युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
4: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
3: इस आयोजन के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल शामिल हुए। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक

0: प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेक थ्रू साबित हुआ है।
1: आज उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य ने भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
0: मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है, एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
1: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
0: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंडल के प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल को सौगात देते हुए दोहरी घाट और यहां ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
2: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
0: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी शामिल हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में इंडिया फर्स्ट की भावना राष्ट्रीय चरित्र बन गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसी भावना ने वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान और सामर्थ्य को नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा आज वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
3: नए भारत में राष्ट्र निर्माण

0: की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए और उन्होंने सभा को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसे सफल बताया। इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, वियतनाम और भारत सहित ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और अन्य हितधारक शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स बैठक की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रही। इस दौरान प्रतिनिधियों ने वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एमएसएमई की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुआ। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। बैठक में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेन चौधरी भी उपस्थित रहे। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एसआईटी की जांच से सामने आएगा मंदिर चढ़वा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

और प्यार हो गया, ये है फिल्म का नाम। आशा भोसले की आवाज, जावेद अख्तर के बोल। चुप के मैं

नुसरत फतेह अली खान के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज थी, फिल्म थी और प्यार हो गया। बेखुदे फिल्म का गाना आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में, गीतकार अनवर सागर और संगीतकार नदीम श्रवण।

प्यार प्यार इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण। आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग। दिल आशना है, आइए इस फिल्म का गीत सुने। साधना सरगम और सुरेश वाडकर की आवाजें, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आनंद मिलिंद। शाम के 7:47 और 8 सेकंड।

दिल आशना है। साधना सरगम और सुरेश वाटकर की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे आनंद मिलिंद का, ये प्यारा सा संगीत था। कार्यक्रम का अगला गाना आपके रेडियो सेट पर। फिल्म का नाम अग्नि साक्षी, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

उदित नारायण, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे समीर की रचना। संगीतकार थे अनु मलिक और फिल्म थी आन। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने पंडित सीताराम सिंह की आवाज में राज का ये कलाम।

आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज के फनकार हैं पंडित सीताराम सिंह। आइए कार्यक्रम के आखिर में सुने फैज अहमद फैज का कलाम, आवाज पंडित सीताराम सिंह की।

0: पंडित सीताराम सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे फैज़ अहमद फैज़ का ये कलाम। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8:10 होने वाले हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
3: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
2: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
3: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब

0: युद्ध चल रहा था जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइन से ऑल अलाइन देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय है रशिया के, दूसरी और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वही एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश है, तो इनके साथ भारत ने एक रोडमैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया, हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो, लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आ गई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल है उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओइस्ट को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओइस्ट पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफी तादाद में माओइस्ट अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहां इनके नेता भी जो थे,

0: कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया और इसके वजह से माओस तकरीबन खत्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब ये चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसेस बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट्स थे और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट्स थे, सबने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफी मात्रा में वहां पर हथियार खत्म हो गए और इंसिडेंट भी खत्म हो गए और उस वजह से काफी वहां पर शांति फैलाया गया उस इलाके में और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफी जोरों से चल रहा है और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफी जोरों से वहां पर कब्जा मार के रखा हुआ था और इसको खत्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में और जिनके वजह से अब वहां पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफी सुविधा पहुंच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आप ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं और आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से उसमें भी काफी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण FTA है और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया और ये एशिया

0: में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स हैं। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहां के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोलर अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया। कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें और

0: दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकें, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजन लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशन ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए, मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूं, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से यह है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहां तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से, पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता, अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है

0: उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
0: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
0: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बनके जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं।

0: करते हैं। इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो यूएनएससी जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी रक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है। इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और एलपीजी पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और एलपीजी चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और एलपीजी मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में, उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानते हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल। तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर

परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास

0: कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वकील के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई

0: मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट है।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: दिस इज द कंट्री।
3: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है।

0: जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agree to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's singles semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality." He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, the PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुए।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और इंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झारसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में उसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। लेबनान पर इसराइली हमले में 21 अफराद की हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के बीच बराह रास्त अमन बातचीत का नया दौर मुलतवी हो गया है। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। और बैडमिंटन में कल चीन में मकाऊ ओपन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की अश्मिता चलिया का मुकाबला पार गायुन से होगा। अब खबरें तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। PMVBRY के नफाज के तहत तरगीबात तकसीम किया जाना एक अहम संगमील की हैसियत रखता है, जो रोजगार से मुंसलिक हुकूमत की अहम तरगीबाती स्कीम है, जिसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने में तेजी लाना, रोजगार फराहम करने में इजाफा और मुख्तलिफ शोबों में समाजी सिक्योरिटी को वसत देना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 21वीं सदी में उन ममालिक में मौके फराहम होंगे जो हुनरमंदी को फरोग देंगे, इख्तिरा में इजाफा करेंगे और क्वालिटी के आला तरीन मेयारात को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़कर कायदाना रोल अदा करने के लिए तैयार है। जनाब मोदी ने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की में इजाफे, इख्तिरा और कारोबार को बढ़ाने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करेंगे।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: जनाब मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत

0: रोजगार योजना का मकसद पहली मर्तबा रोजगार हासिल करने वालों को बाएख्तियार बनाना और नौजवानों और सनअत के दरमियान एक पुल का रोल अदा करना है. उन्होंने कहा कि उमंगें हुनरमंदी और भारतीय नौजवानों की सलाहियत विकसित भारत की राह मुतय्यन करती हैं. उन्होंने इस बात को उजागर किया कि स्कीम के अब तक तकरीबन 70 लाख नौकरियां कायम की जा चुकी हैं.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है. करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है. 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है.
0: इस स्कीम के तहत पहली बार रोजगार हासिल करने वाले 15,000 रुपए तक की तरगीबात के अहल होते हैं जो उन्हें अफरादी कुवत की हैसियत से तस्लीम किए जाने में अहम मदद फराहम करती है. रोजगार के इजाफी मौके पैदा करने वाले आजिर 3,000 रुपए फी माह तक की तरगीबात के अहल होते हैं जो फी इजाफी रोजगार पाने वाले के हिसाब से दी जाती है जिससे रोजगार के पायदार मौके की हौसला अफजाई होती है. इससे कबल तरगीबात की तकसीम से पहले वजीर आजम ने विज्ञान भवन में कुछ नौजवानों से बातचीत की. इस मौके पर खिताब करते हुए मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी हुकूमत ने वर्करों की बहबूद और मफादात की खातिर 4 अहम लेबर कोड नाफिज किए हैं. वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उड़ीसा में झारगोड़ा के लखनपुर में कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल से मुतालिक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे. इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 25,000 करोड़ रुपए है. कोयले की वजारत ने बताया कि यह प्रोजेक्ट मुल्क की पहली कमर्शियल सतह की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की सहूलत की तारीखी संग मील की निशानदेही करता है. ये प्रोजेक्ट भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया है जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड का एक मुश्तरका इदारा है. ये देसी साख्ता कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन योमिया अमोनियम नाइट्रेट की पैदावार करेगा. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अपनी आबाई रियासत के दो रोजा दौरे पर उड़ीसा पहुंची. खराब मौसमियाती सूरतहाल के पेश नजर मयूरभंज जिले की डंडबोस हवाई पट्टी पर उनकी तयशुदा परवास की लैंडिंग मनसूख कर दी गई जिसकी वजह से पड़ोसी रियासत मगरबी बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से राय रंगपुर सड़क के जरिए सफर किया. अपनी आमद के फौरन बाद सदर जमहूरिया ने एम्स भुवनेश्वर सेटेलाइट सेंटर और राय रंगपुर में एक मेगा सब डिविजनल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया. इस पहल से शुमाली उड़ीसा के लोगों के लिए सेहत की देखभाल की मियारी सहूलत की फराहमी में मदद मिलेगी. वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत की घरेलू सतह पर दिफाई साजो सामान की तैयारी 2014 में 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर गुज़िश्ता माली बरस में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई. उन्होंने कहा कि दिफाई साजो सामान की बरामदात जो 2014 से पहले सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए थी वो अंदरून मुल्क तैयार करता भारतीय दिफाई साजो सामान की बढ़ती आलमी मांग के सबब बढ़कर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए हो गई है. जनाब सिंह नागपुर के अंबाझरी में यंत्र इंडिया लिमिटेड की हथियारों की फैक्ट्री में 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का संग बुनियाद रखे जाने के बाद खिताब कर रहे थे. महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस नए एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस से नागपुर और विदर्भ खित्ते में दिफाई साजो सामान की तैयारी का इको निजाम मुस्तहकम होगा.
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है. इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था. इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं. यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है.
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर पैदल चलने का हक एक बुनियादी हक है। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और ए एस चंद्रोकर

0: मुश्तमिल एक बेंच ने फैसला सुनाया है कि एक शहरी का चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक बुनियादी है और उसे मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर तरजीह दी जानी चाहिए। एक अहम फैसले में अदालत आलिया ने कहा है कि आर्टिकल 19(1)(d) के तहत आमदोरफ्त के हक की गारंटी का एक हिस्सा है और इसमें आर्टिकल 21 के तहत जिंदगी के हक और जीने की आजादी समेत दीगर बुनियादी हकूक शामिल हैं। अदालत उज़्मा का यह फैसला मोटर गाड़ी के एक अफसोसनाक हादसे में मुआवजे के केस में सामने आया है जहां एक बाप ने स्कूल ले जाते वक्त अपने 5 साल बेटे को खो दिया। भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले ज़िक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाएख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इक़दाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खुसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम शुमाल मशरिक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अगर मुल्क की तामीर और तरक्की की बात की जाए तो शुमाल मशरिक को नजरअंदाज करना नए भारत में मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब इस खत्ते की पहचान सिर्फ तशद्दुद, नाकेबंदी और नज़रअंदाज होने तक महदूद थी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसे बदला। गुज़श्ता 12 साल में वज़ीर आज़म ने 83 मरतबा से ज़्यादा शुमाल मशरक का दौरा किया है। इस दौरान दूरदराज के पहाड़ी इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ी है, जिसकी वजह से सियाहत को फ़रोग़ मिला है और आमदनी के मकामी ज़राए से मुतालिक मवाक़े बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,270 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 46,290 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड नेटवर्क तामीर किया जा चुका है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए ईटानगर के डेरा नातुंग के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम क्यू खान ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट है।
1: आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में शुमाल मशरक की 8 रियासतें या अष्ट लक्ष्मी तरक्की की नई दास्तान लिख रही हैं। दिल्ली से सुपर्णा साइके की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने अख़वाए मुत्तहदा में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए इसकी शदीद नुक्ताचीनी की है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकेनस्टीन स्टेट करार देते हुए कहा कि उसे उस वक्त बेपनाह हैरत होती है जब उसका ही राक्षस उसे जकड़ लेता है। ये बातें अक़वामे मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कल कहीं। उन्होंने ये बातें उस वक्त कहीं जब पाकिस्तान और इस्लामी तआवुन तंजीम OIC ने अक़वामे मुत्तहदा हाई कमिश्नर की सालाना रिपोर्ट पर गुफ्तगू के दौरान जम्मू और कश्मीर का मामला उठाया। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान और OIC के जरिए दिए गए हवाले का जवाब देने के लिए इस हक को इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके मौजूदा वजीर दिफा सरकारी पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दों को पनाह देने, ट्रेनिंग देने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने की बात को बड़े फख्र से बयान करते हैं। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी इल्जाम को यकसर मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा था, है और रहेगा। वाहिद हल तलब मसला पाकिस्तान का भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा और उनकी वापसी है। मोहतरमा सिंह ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास आबी मुआहदे का जिक्र करते हुए इसे फरसूदा करार दिया। इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। इससे पहले इस लड़ाई के सबब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बातचीत मुलतवी हो गई थी। ये जंगबंदी आज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से नाफिजुल अमल हो गई है। अमरीका के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि अमरीका और कतर के मुजाकरातकारों ने ईरान की मदद से यह समझौता तय किया था। अहदेदार ने कहा कि आज सुबह सवेरे लड़ाई के बाद अब इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान जंगबंदी हो गई है। दूसरी जानिब इसराइल और हिजबुल्ला ने फौरी तौर पर जंगबंदी के नफाज की तस्दीक नहीं की है। इससे पहले आज जनूबी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान शदीद लड़ाई के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। बैडमिंटन में

0: भारत की अश्मिता चलिहा आज चीन में जारी मकाऊ ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जुनूबी कोरिया की किम मिनसन को सीधे गेम में और 21-16, 21-18 से हराकर आखिरी चार में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला कल जुनूबी कोरिया की पार्गायून से होगा। इससे पहले अश्मिता ने राउंड ऑफ 16 में अमरीका की शिखा जायसवाल को 22-20, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। दूसरी जानी भारत की अनमोल खरब क्वार्टर फाइनल में चीन की चौथी पोजीशन की खिलाड़ी हैन क्विंसी से 14-21, 21-15, 21-13 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और एंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झरसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में इसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTR DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अंजुमन।

अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। गुलजार का ये कलाम आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज में। आइए अब सुने शायर पयाम सईदी की ये गजल जगजीत सिंह की आवाज में। आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे कार्यक्रम अंजुमन। रात्रि के 9:39 और 21 सेकेंड्स।

ढलती रात के साए में आप हैं आकाशवाणी वाराणसी के संग और सुन रहे कार्यक्रम अंजुमन। आइए अब सुने कतिल शिफाई की ये गजल, आवाज अशोक खोसला की।

सुदर्शन फकीर की ये बहुत प्यारी सी गजल आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। अंजुमन कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नूह नारवी की ये गजल आवाज पंकज उदास की। इस समय आप हैं आकाशवाणी वाराणसी के संग

0: पंकज उदास की आवाज में एक गजल आप सुन रहे थे। अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीत एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका।
1: सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य पत्रिका के इस माह के अंक में। स्वास्थ्य पत्रिका के इस अंक में सबसे पहले संपादकीय। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व सिकल सेल दिवस। सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है। इसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज का ये दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2008 में इस बीमारी को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी थी, जिसके बाद 19 जून 2009 को पहली बार आधिकारिक तौर पर यह दिन मनाया गया। सामान्य तौर पर हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स गोल और लचीले होते हैं, जो शरीर में आसानी से ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, लेकिन सिकल सेल बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में ये कोशिकाएं आधे चांद के आकार की और थोड़ी सख्त हो जाती हैं, जिसके कारण रक्त की कोशिकाएं नसों में फंसने लगती हैं और ऑक्सीजन का जो बहाव है वो रुक जाता है, जिससे शरीर में खून की भारी कमी हो जाती है। शरीर के अंगों, हड्डियों और जोड़ों में असहनीय दर्द होने लगता है। इस बीमारी से लड़ने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य साल 2047 तक देश से इस बीमारी को पूरी तरह खत्म करना है। इसके तहत शादी से पहले या गर्भधारण के समय खून की जांच करवाने की सलाह दी जाती है। श्रोताओं, इस बीमारी की खास बात यह है कि ये रोग माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से उन्हें विरासत में मिलता है। यदि दोनों यानी माता और पिता में सिकल सेल जीन हो तो बच्चे में ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टरों की सलाह अनुसार कुछ आवश्यक रक्त परीक्षण कराने जरूरी हैं। साथ ही डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि मरीज फोलिक एसिड की दवाएं समय पर लेता रहे और दर्द नियंत्रण के लिए उपचार करवाता रहे। साथ ही साथ संक्रमण से बचाव बेहद आवश्यक है और स्थिति गंभीर होने पर और आवश्यकता होने पर रक्त चढ़ाने की भी जरूरत महसूस होती है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और कुछ मामलों में डॉक्टर्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी सलाह देते हैं। तो इस बीमारी से लड़ने के लिए घबराने की बजाय आवश्यकता है इस बीमारी के बारे में जानने की और अपने साथ साथ अपनों को जागरूक करने की। स्वास्थ्य पत्रिका में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं योग और प्राणायाम किस तरह हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। जानकारी देंगे योग प्रशिक्षक आशीष टंडन। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही असली धन है, फिर भी अपनी व्यस्त दौड़ती भागती दिनचर्या और बेतरतीब जीवन शैली के कारण अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में हमारे दैनिक जीवन में योग का महत्व और भी बढ़ जाता है। योग न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से भी हम में सकारात्मक बदलाव लाता है। योग न सिर्फ एक क्रिया है, बल्कि एक जीवन शैली, एक संस्कृति है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ योग प्रशिक्षक आशीष टंडन।

0: जी, आइए उन्हीं से जानते हैं कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। नमस्कार गुरु जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी।
0: गुरु जी, सबसे पहले ये बताएं कि दैनिक जीवन में योग का क्या महत्व है।
1: आकांक्षा जी, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है आपका कि दैनिक जीवन से अर्थ है कि दिन भर हम जिस तरह से अपनी दिनचर्या को करते हैं, जिस तरह से दिनचर्या को निभाते हैं
0: जी,
1: इसमें दैनिक जीवन में योग का वैसा ही महत्व है जैसे हमारे लिए भोजन का। अगर हम दिन भर भोजन करते हैं तो उस भोजन से ऊर्जा का निर्माण होता है और योग उस ऊर्जा को संतुलित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। हम योग के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संतुलित करते हैं और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। एक मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाओं में आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और योग इस ऊर्जा को संतुलित करता है, मानसिक और शारीरिक दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है जिससे आपकी ऊर्जा को सही दिशा मिलती है और आपके कार्यों में, आपके दिनचर्या में बहुत बड़ा बदलाव आता है जिसका परिणाम आप योग अभ्यास के बाद अनुभव कर सकते हैं।
0: तो जैसा आपने अभी कहा, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में योग की जो भूमिका है बेहद महत्वपूर्ण है, वो किस तरह है?
1: देखिए आकांक्षा जी, शारीरिक महत्व की आप बात करें तो शारीरिक महत्व के लिए योग एक सबसे बड़ा उपाय है। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो योग अभ्यास करने के दौरान हमारी मांसपेशियों में, हमारे शारीरिक जो ज्वाइंट्स हैं, जोड़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है और शरीर में अगर फुर्ती ना हो, शरीर में अगर स्थिरता ना हो, अगर दोनों का समन्वय ना हो, अगर फुर्ती और स्थिरता दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो हम किसी भी कार्य को शारीरिक स्तर पर बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। और योग का अभ्यास करते हैं, जब हम योग के आसन करते हैं तो हमारे शरीर में एक स्थिरता और तेजी दोनों के बीच का संतुलन होता है और ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य, मन बहुत चंचल है, हम किसी भी कार्य को करने के लिए जब बैठते हैं तो मन और भी कई दिशाओं में भागता है तो और योग का जब हम अभ्यास करते हैं और योग के जब अभ्यासी हो जाते हैं तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण कर पाते हैं, अपनी चीजों पर हम नियंत्रण कर पाते हैं जिससे मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य का संबंध योग से सीधा हो जाता है।
0: जी गुरु जी, ये जानना चाहेंगे कि योग है क्या?
1: अच्छा जी, ये आज भी रिसर्च हो रहे हैं कि योग है क्या। योग के इतने आयाम हैं, इतने बृहद रूप हैं कि जिनको एक पुस्तक में, एक ग्रंथ में संचलित करना या संकलित करना बहुत ही दुष्कर है
0: जी।
1: तो योग जैसा कि एक आम भाषा में लोग जानते हैं, योग एक जीवन शैली है, एक जीवन विज्ञान है। परंतु योग के अगर ग्रंथों में जाएं तो योग एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिसकी 8 शाखाएं हैं जिनको हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के रूप में जानते हैं। और जैसा कि आपके प्रश्नों में एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि शरीर और मन, शरीर के लिए हम आसनों का अभ्यास करते हैं, मन के लिए हम धारणा और ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो ये योग एक वृक्ष है जिसके अंदर ये सारी क्रियाएं अपने आप आ जाती हैं शाखाओं के रूप में।
0: जी बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति जिसने कभी योग नहीं किया है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, किस तरह शुरुआत की जाए?
1: योग तो हमारे जीन में है, हमारे वंशजों ने भी योग किया और हमने कई जन्मों पहले से योग को धारण किया है। योग आज का नहीं, योग 7000 वर्षों से हम सुनते और देखते आ रहे हैं। योग को शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं, जब बाल अवस्था में हम और आप रहे होंगे तो भी हम योग करते थे, तो कई आसन हमने बचपन में ही सीख लिए थे, कई आसन हमने युवा अवस्था में सीखे। तो आज अपने मन से ये भ्रम और ये भय निकाल दीजिए कि योग करने के लिए कोई बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता होती है। योग करने के लिए सिर्फ आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आपके अंदर सबसे पहले जरूरी जो चीज होती है कि आपका एक मानसिक और शारीरिक संकल्प होना चाहिए योग अभ्यास करने के लिए, क्योंकि योग बहुत धीरे धीरे सधता है, बहुत धीरे धीरे आपके प्रगति होती है योग में। तो योग अभ्यास प्रारंभ करने के पहले तो सबसे पहले आपको अपने शरीर और मन को स्थिर करना है कि अब हमें योग का अभ्यास करना है और योग का अभ्यास बहुत धीरे धीरे प्रारंभ करना चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम से, छोटे छोटे आसनों से, प्राणायाम से, ताकि आपके शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो इस

0: चीज को ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी योग विशेषज्ञ से अवश्य सलाह लें योग आरंभ करने के पहले।
1: बिल्कुल, तो गुरुजी क्या किसी उम्र विशेष का भी प्रभाव पड़ता है?
0: जी, ये बहुत जरूरी प्रश्न था जो कि इस संवाद में शामिल होना आवश्यक था। योग बच्चों के लिए, योग युवाओं के लिए, योग वृद्धों के लिए, और सबसे जरूरी है योग महिलाओं के लिए। तो महिलाएं, बच्चे और वृद्ध, तो इन लोगों के लिए योग के अलग विशेष विशेष आसन है, विशेष विशेष प्राणायाम है, जिनका इनके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर इनका चयन करने में थोड़ी सी भी लापरवाही करें तो हो सकता है विपरीत प्रभाव पड़े। योग एक विज्ञान है और विज्ञान के साथ हम किसी तरह की अनदेखी नहीं कर सकते। तो ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को योग करना हो तो अपने अनुसार, अपने शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार योग आसन, प्राणायाम और अन्य क्रियाओं का चयन करें।
1: और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि योग प्रशिक्षक की निगरानी में ही योगासन किए जाएं।
0: जी, ये बहुत जरूरी है कि योग का कोई विशेषज्ञ ऐसा व्यक्ति हो जो आपको सही सलाह दे सके, आपके लिए सही आसनों, प्राणायाम और अन्य योग की क्रियाओं का चयन कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो।
1: गुरुजी, आपने उम्र की बात की, बच्चों के लिए अलग योग, महिलाओं के लिए अलग योग, तो जानना चाहेंगे कि बच्चों का जो मानसिक विकास है उसमें योग की क्या भूमिका है?
0: बच्चों में योग के मानसिक महत्व को हम इस तरह से देखते हैं कि बच्चों का मन सबसे ज्यादा चंचल होता है।
1: जी।
0: बच्चे सबसे ज्यादा खिलवाड़ी होते हैं, उनका मन खेल में ज्यादा होता है। तो बच्चे अगर योग का अभ्यास करते हैं, उसके लिए आजकल एक नया योग का आयाम बना है, योगासन खेल। अगर हम बच्चों को योगासन खेल से जोड़ते हैं तो बच्चे धीरे धीरे योग की ओर आकर्षित होते हैं और इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे जैसे बच्चे आसन का अभ्यास करते हैं, आसनम स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता और सुख की अनुभूति जब उनको होने लगती है तब उनका आसन सधता है। और आसन के सधने से उनका मानसिक संतुलन भी स्थिर होता है, मानसिक चंचलता भी स्थिर होती है। तो उनकी चंचलता जैसे जैसे कम होगी, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी।
1: जी।
0: और इस तरह से जैसे ही वो किसी कार्य को करते हैं तो उनकी पूर्ण एकाग्रता से उनके कार्य में उनका मन लगता है और उस कार्य में बहुत अच्छे से सफल हो पाते हैं। इसलिए योग बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है ताकि वे अपने मन पर, चित्त पर नियंत्रण कर लें और अपने कार्यों में पूर्ण सफलता पाए।
1: तो बच्चों को योग से जुड़ने के लिए किस तरह हम प्रेरित कर सकते हैं?
0: जैसा कि अभी आपको बताया कि योगासन खेल एक ऐसा नया प्लेटफॉर्म है जो पूरे विश्व में खेला जा रहा है और आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए योगासन खेल एक नए उपक्रम के रूप में उभर कर आने वाला है। योगासन खेल आने वाले भविष्य में ओलंपिक में भी जाने वाला है और ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि बच्चे योगासन खेल की ओर प्रेरित हों और धीरे धीरे योगासन खेल में दक्षता पाएं और अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। ये इसलिए इन बातों से हम बच्चों को प्रेरित भी कर सकते हैं और बच्चे जब आसन करते हैं तो उनके अंदर स्वयं प्रेरणा आती है, उनको प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती। योग स्वयं में एक प्रेरणा है, तो इसके लिए सिर्फ बच्चों को आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा ताकि वो योग से जुड़े। ये कार्य बच्चों के माता पिता, बच्चों के गुरुजन और उनके विद्यालय से ही शुरू होगा। तो विद्यालय प्रांगण में अगर योगासन खेल को अभी से हम सम्मिलित कर देते हैं, योग की विद्या को हम अभी से सम्मिलित कर देते हैं, तो आने वाले समय में बच्चे स्वयं प्रेरित होंगे और दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा देंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, इसके लिए साधुवाद।
1: हम महिलाएं जो होती हैं गुरुजी, उनका जो तनाव रहता है अलग तरह का रहता है, तो महिलाओं में तनाव प्रबंधन जो है उसमें योग कितना कारगर सिद्ध हो सकता है?
0: देखिए, इस पे बहुत सारे प्रयोग हो चुके हैं आकांक्षा जी, ये बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए योग बहुत ही जरूरी है क्योंकि महिलाओं के तनाव प्रबंधन में, जैसा कि आपने प्रश्न किया, योग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक गृहिणी, एक महिला ही ऐसी वीर बहादुर होती है कि वो पूरे घर को अपने कंधों पर उठाए रहती है। प्रातः उठने के बाद रात्रि विश्राम तक, शयन तक, उसको पूरे परिवार की, पूरे घर की जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को उठाते उठाते वो महिला स्वयं को भूल जाती है। यहीं से महिलाओं के अंदर तनाव पैदा होता है। तो योग क्या है? स्वयं से जोड़ने की विधा है। स्वयं से स्वयं को योग ही जोड़ता है। तो महिलाओं के तनाव प्रबंधन के लिए योग बहुत

0: लाभदायक है अगर महिलाएं प्रतिदिन 40 मिनट भी योग आसन प्राणायाम ध्यान का अभ्यास करती हैं तो उनके तनाव पर वे प्रबंधन कर सकती हैं, तनाव पर नियंत्रण कर सकती हैं।
1: गुरु जी, जब हम योग की बात करते हैं तो उसके साथ प्राणायाम और ध्यान अपने आप जुड़ जाते हैं, तो क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं?
0: देखिए आकांक्षा जी, जैसा कि अभी प्रारंभ में ही बताया कि योग 8 शाखाओं का एक वृक्ष है
1: जी,
0: तो प्राणायाम और ध्यान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके लिए आपको थोड़ा विस्तृत रूप से बताना पड़ेगा, क्योंकि आसन और ध्यान इन दोनों के बीच में एक सबसे बड़ा जो साधन है वो है प्राणायाम। जब हम आसन करते हैं तो हमारा शरीर में स्थिरता आती है, शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा चित्त स्थिर होता है। प्राणायाम करने से हमारे मन पर नियंत्रण होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है
1: जी।
0: योग एक विज्ञान है, जैसा मैंने बताया, जब हम श्वास पर नियंत्रण करते हैं तो हमारे मन पर नियंत्रण होता है। क्योंकि एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, ब्रीथ इज द किंग ऑफ माइंड। अगर आपको अपने प्रजा को वश में करना है तो सबसे पहले राजा को वश में करना चाहिए, और प्राणायाम राजा के रूप में जाना जाता है। प्राणायाम को हम राजा के रूप में देखते हैं, क्योंकि श्वास प्राणस वसे सर्विदम गुम यत कित प्रतिष्ठितम माते व पुत्रान रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञानश्च विदेहिना इति। जो प्राण है ना, वो हमारे सभी जीवों में बसता है, और बिना प्राण के जीव की क्या स्थिति हो सकती है ये आप स्वयं जानते हैं। तो प्राणायाम का बहुत महत्व है, प्राणायाम ही सब कुछ है। प्राणायाम से हमारे चित्त पर नियंत्रण होता है, प्राणायाम से ही हमारे शरीर में सभी प्रकार के विकारों का निवारण भी होता है।
1: योगाभ्यास के समय किन खास बातों का ध्यान हमें रखना होगा?
0: योगाभ्यास के समय आपको जो विशेष बातें हैं, अपने शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। यदि आपके शरीर में किसी प्रकार का विकार है तो विकार के अनुसार योग करें, या आप लगता है आपको कि हम ये चीजें नहीं कर सकते तो उन चीजों को ना करें। योग में विशेष सावधानी बरतें। जो आसन, जैसा कि आपको पिछले प्रश्न में बताया कि जो आसन, जो प्राणायाम, जो क्रियाएं योग की आप आसानी से कर सकते हैं, उन्हीं से शुरुआत करें। जैसे जैसे आपका शरीर और मन सधता जाएगा, आप अपने आसनों प्राणायाम की नई ऊंचाई पर पहुंचते जाएंगे। तो इसमें बहुत जल्दबाजी ना करें, बहुत धीरे धीरे योग का अभ्यास करें।
1: गुरुजी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सामाजिक विकास में योग की क्या भूमिका है?
0: धन्यवाद आकांक्षा जी ये प्रश्न पूछने के लिए आपको। योग स्वयं का निर्माण करता है
1: जी।
0: जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो योग सिर्फ आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ही नहीं है। योग के दो ऐसे अंग हैं जो कि यम और नियम के नाम से जाने जाते हैं। यम हमें सिखाता है अहिंसा सत्य अस्थे ब्रह्मचर अपरिग्रह, और नियम सिखाता है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो योग का अभ्यास करता है, योग का अभ्यास आरंभ भी करता है, तो इन 10 नए चीजों को धारण करना होगा। अहिंसा का पालन करना होगा, सत्य का पालन करना होगा, अस्ते मतलब चोरी ना करना, तो किसी भी प्रकार की चोरी में संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर पूरा उसका नियंत्रण होना चाहिए, और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। शौच सिर्फ बाहरी नहीं है, मानसिक भी है। आंतरिक शौच की बात करते हैं हम योग में, उनकी आंतरिक शौच आंतरिक शुद्धि होनी चाहिए। और इन सब चीजों का पालन करते करते जब हम ईश्वर परिधान पर आते हैं, ईश्वर परिधान की बात करें तो ईश्वर को अपने जो भी कमाया, जो भी आपने प्राप्त किया, उसको ईश्वर को समर्पित करना। ऐसा करने से एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, और जो व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है, करता है, वही व्यक्ति समाज का भी निर्माण कर सकता है और अपने देश का भी निर्माण कर सकता है। तो योग एक व्यक्ति समाज के लिए करता है
1: जी।
0: वो अपने लिए तो कर ही रहा है, लेकिन उसका प्रभाव उसके आसपास, उसके परिवार पर, उसके आचरण, जैसे कि हम यम का पालन करते हैं तो हमारा एक चरित्र निर्माण होता है, जब हम नियम का पालन करते हैं तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो जब कैरेक्टर हमारा, चरित्र अच्छा होगा तो हमें देखकर भी हमारे आसपास के लोग उससे प्रेरणा लेंगे और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने ऊपर भी करने का प्रयास करेंगे। अगर हम सत्य बोलते हैं तो अपने परिवार में भी हम बोलेंगे तुम भी सत्य बोला करो, और परिवार में सत्य होगा तो हमारे पड़ोस में भी सत्य बोलने की अभ्यास होगा, और इसी तरह हमारे समाज पर भी। तो जो हम करते हैं तो उस कार्य का हमारे समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये सामाजिक उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है।
1: श्रोताओं, शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित व्यक्तित्व के

0: विकास में योग बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वयं को पाने का महत्वपूर्ण साधन है योग, आध्यात्म और विज्ञान का संगम है योग। तो अगर हम स्वयं को सकारात्मक रूप से बदलने के लिए वचनबद्ध हैं, तो हमें योग को अपनाना होगा। नियमित योग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है हीमोफीलिया, क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है, क्या इसका निदान जल्दी किया जा सकता है। इस संदर्भ में हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर दीपा रानी।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा रानी हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी IMS BHU वाराणसी में। ये सुनने में वर्ड एक छोटा सा है हीमोफीलिया, लेकिन बहुत ही गंभीर बीमारी है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है, मतलब जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है। तो इसमें क्या होता है कि जो अफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं इसको ट्रांसमिट करते हैं अपने आने वाले बच्चों में। और एक बड़ी ही, जितनी भी अनुवांशिक बीमारियां उसमें ये एक खास है हीमोफीलिया, क्योंकि इसकी जो कैरियर होती है वो फीमेल्स होती है। तो माताएं ही अपने बच्चों में ट्रांसमिट करती है, मेल्स में कैरियर नहीं होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि अगर जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, आई थिंक अब सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं। तो अगर वो जीन म्यूटेटेड प्रेजेंट हैं फीमेल्स में, वो ट्रांसमिट हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो नेक्स्ट जनरेशन को हीमोफीलिया होगी। ये तो बात हो गई अनुवांशिक बीमारी की, बट हीमोफीलिया एक्चुअल में क्या है? एक्चुअली हीमोफीलिया एक रक्त स्राव से संबंधित बीमारी है। रक्त स्राव से संबंधित ऐसी बीमारी है जिसमें कि खून का थक्का जो है वो नहीं जमता है। तो हमारी जो बॉडी में जो नेचुरल प्रोसेस है, जो प्राकृतिक रूप से हम लोगों को मिला है, कुछ भी इंजरी होती है तो तुरंत वहां ब्लड क्लॉट जम जाता है। आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग हो या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो। इसके लिए दो फैक्टर्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो हमारा होता है प्लेटलेट और दूसरा होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स। इनके साथ अन्य फैक्टर्स भी होते हैं जो सब मिल करके ये खून का थक्का जमाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या है कि प्लेटलेट तो हमारे पास है, अब इन क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमारे कुछ जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनकी डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई है, और जिसकी वजह से वो खून का जो है थक्का नहीं जम पा रहा है। तो बेसिकली हीमोफीलिया यही बीमारी है कि खून का थक्का नहीं जमता है, रक्त स्राव होता रहेगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, वो जमेगा नहीं। अब हम इस पे आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अनुवांशिक बीमारी है, तो हमारे जितने भी बॉडी में प्रोटीन्स हो, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है, ये प्रोटीन है, इन सब के लिए ना जीन्स होते हैं जो कि कोड करते हैं, कोडिंग करते हैं, और इनसे प्रोटीन्स बनते हैं। तो इनपे अगर म्यूटेशन हो जाए तो पर्टिकुलर जो फैक्टर्स है क्लॉटिंग फैक्टर्स वो बनेंगे ही नहीं। जैसे हीमोफीलिया से अगर हम संबंधित बात करें तो हमारे ऐसे तो हमारे बॉडी में 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, लेकिन इसमें क्या होता है फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11, ये भी अलग अलग होता है। तो ये सारी डिफिशियंट हो जाएंगे, तो डिफिशियंट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट को क्या होगा कि उसका अगर हल्की भी चोट लगी या उसका इंटरनल ब्लीडिंग भी उसको आसानी से हो सकती है। तो होता क्या है हीमोफीलिया के केस में कि जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है, मान लीजिए कि ये मेल चाइल्ड हुआ एक, और उसको क्या होता है कि जब तक वो छोटा रहता है तब तक तो कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा। हाँ, 6-7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद वो जब घुटनों के बल चलना शुरू करेगा और जब वो थोड़ा खेलना कूदना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली उसको चोट लगेगी, चलने की कोशिश करेगा, खड़ा होगा तो उसको चोट लगेगी। तो क्या होता है, जैसे नॉर्मल बच्चों को चोट लगती है, हल्का सा उसमें स्वेलिंग आई जो तुरंत डिजॉल्व हो जाती है। हीमोफीलिया के केस में होगा वो स्वेलिंग बड़ी हो जाएगी, वो गर्म रहेगी छूने पर और उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हुई रहेगी। इसी तरह से जोड़ों में, मसल्स में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है। और ये भी जो सीवियरिटी है वो डिपेंड करती है कि उसमें कितना ज्यादा फैक्टर डिफिशियंट है। अगर फैक्टर ठीक ठाक, मतलब 50% चल रहा है, तब तो इतनी गंभीर समस्या आने नहीं वाली है, लेकिन अगर 1% से कम हो गया तब तो बहुत ज्यादा सीवियर समस्याएं आ सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर हमें ये पता चल जाता है बचपन से ही बच्चे में या थोड़े बड़े होने के बाद कि हाँ इसे अगर चोट लग रही है तो ये आम बच्चों से ज्यादा ब्लीड, क्योंकि नॉर्मली देखिए तो दबा दें या प्रेशर दे दें तो क्लॉट बन जाएगा, रुक जाएगा ब्लीडिंग और वो फिर धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, लेकिन हीमोफीलिया में ऐसा नहीं होता, ब्लीडिंग होती रहती है। तो तुरंत उसको चिकित्सक के पास जाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। आप चिकित्सक के पास जाएं, उससे जो हम लोग ग्लोबल कोगुलेशन टेस्ट जिसको कहते हैं PTA PTT ये सारी चीजें कराएं, ऑब्वियसली वो बढ़ी हुई आएंगी। उसके बाद हम लोग फैक्टर एनालिसिस करनी चाहिए, और इन सबसे भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर परिवार में किसी को, जैसे मदर के फैमिली में उसके मामा को, उसके आगे के भाइयों को कहीं पे ये समस्या रही है, तो उसके बच्चों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो

ऐसे लोगों को तो बहुत सतर्क रहना चाहिए और उनको खुद से इनको मतलब पेशेंट को जो भी बच्चा है और जो भी वयस्क व्यक्ति भी है तो तुरंत पहले डॉक्टर से संपर्क करें। देखिए हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज संभव नहीं है बट वो आजीवन रहती है, लेकिन एक हीमोफिलिक पेशेंट भी एक आम जीवन जी सकता है अगर वो बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं उनको ले, प्लस वो समय समय पर अपने जो फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो कराता रहे तो एक सामान्य जीवन भी जी सकता है। अगर ये अनुवांशिक तरीके से नहीं जा रहा है तब ट्रांसमिट होने के चांसेस तो नहीं है। हाँ, अक्वायर्ड हीमोफीलिया एक कंडीशन होता है। अक्वायर्ड मतलब कि ये हमें विरासत में नहीं मिला है, ये बस हमें हो गया। तो अभी ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत सारी, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो हमारे अपने ही जो प्रोटीन्स है उनको अपना नहीं मानता और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देता है। तो जैसे इन फैक्टर्स के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज बन जाए तो ये फैक्टर अपना काम करना बंद कर देंगे, तब ये चीज हो सकती है कि ये अक्वायर्ड हीमोफीलिया। लेकिन ये अक्वायर्ड वाला ट्रांसमिट नहीं होगा, लेकिन जेनेटिक वाला जरूर ट्रांसमिट होगा। देखिए हीमोफीलिया ना तीन तरीके का होता है, हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी होता है। तो एक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है CDC, तो जिसके हिसाब से हम अगर देखें तो ये एक रेयर डिजीज भी है। तो हीमोफीलिया जो है वो ए वाला के चांसेस 1 लाख में 8 लोगों को 10 लोगों को होने के चांसेस होते हैं, और बी वाले को हम क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं जिसमें कि फैक्टर 9 डिफिशियंट होता है और ये थोड़ा कम होता है, इसकी इंटेंसिटी और ये थोड़ी कम होती है, मतलब ये 1 लाख में 3 को होने के चांसेस होते हैं, और 11 जो सी है वो और भी ज्यादा रेयर होता है। अगर पता है कि हाँ पेशेंट इज हीमोफीलिक, उसको हीमोफीलिया बीमारी से वो सफर कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए। वो बाइक चला रहा है, वो कार चला रहा है, या वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, इवन वो वॉक भी कर रहा है, तो उसको ये चीज होनी चाहिए उसके पास कि उसके पास कोई कार्ड हो जो हीमोफीलिया सोसाइटी के लोग देते हैं ये कार्ड, या फिर वो अपने बैंड कुछ हाथ में बांध सकते हैं, गले में कुछ माला लगा सकते हैं कि आई एम हीमोफीलिक। तो उससे क्या होगा कि इनकेस उनको कुछ भी दुर्घटना होती है तो तुरंत उनको उसी प्रकार से उपचार मिलेगा, क्योंकि अगर आप हीमोफीलिक को मान लीजिए ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया और सिर्फ आप उसको ब्लड चढ़ा रहे हैं तो उससे तो कोई फायदा मिलेगा नहीं, वो फिर से लॉस होता रहेगा। तो साथ में हम क्लॉटिंग फैक्टर्स देंगे, उसको पता है हमें कि डिफिशियंट है भाई, इसको तो देना ही है हमें। और आजकल तो बहुत ही अच्छा है कि वे जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस पे वर्क बहुत ज्यादा कर रही हैं, जिसमें कि हम लोग एक्सटेंडेड हाफ लाइफ वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सब दिए जाते हैं ताकि बार बार पेशेंट को इनको इन्फ्यूज ना करना पड़े, क्लॉटिंग फैक्टर देने की जरूरत ना पड़े। एक्सपेंसिव भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, तो हीमोफीलिया सोसाइटी या फिर जो हमारे हीमोफीलिया के केंद्र होते हैं उनमें ये उपलब्ध भी होते हैं, तो ऐसे मरीजों को वहां से ये प्राप्त हो सकते हैं। ये जो हीमोफीलिया की बीमारी होती है इसमें जोड़ों में और मसल्स में भी ब्लीडिंग होती है जिससे कि ये खराब हो सकते हैं और जोड़ और मसल्स जो है बहुत वीक भी हो जाते हैं, लोगों को चलने फिरने में भी आगे चलकर दिक्कत होने लगती है। तो फिजियोथेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजीवन मतलब जो उनका एक सामान्य जीवन यापन हीमोफीलिक पेशेंट के लिए अगर करना है तो एक तो एक समुदाय चाहिए जो कि इसका केयर करे, दूसरा है कि पेशेंट खुद क्या क्या कर सकता है। अगर पेशेंट को पता है कि मैं हीमोफीलिक हूं तो एक तो वो जो भारी एक्सरसाइजेस हो उससे उसको बचना चाहिए, योग कर सकता है, वॉक कर सकता है, हल्के व्यायाम कर सकता है, ये नहीं कि बहुत भारी सामान हम उठाकर जा रहे हैं, नुकीली चीजें या वैसे एरियाज जहां पे पहाड़ हैं कांटे लगे हों उन सब एरिया में जाने से बच सकता है। फिर खान पान पे विशेष ध्यान दे सकता है, जैसे हरी पत्तेदार साग सब्जियां, बीन्स और ये सारी चीजें अपने उसमें इंक्लूड कर सकता है, प्लस वो म्यूजिक। और एक तो ये नहीं सोचना है कि मैं हीमोफीलिक हो गया बस अब तो हमारा सब कुछ खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हैं, बस यही है कि आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है कि ब्लीडिंग ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस सर्जरी के लिए जा रहा है तो इन सब चीजों में उसको ज्यादा प्रिकॉशन लेना है और उसको तुरंत अपने डॉक्टर ट्रीटिंग फिजिशियन को या ट्रीटिंग सर्जन को तुरंत बताना है कि हम हीमोफिलिक हैं तो हमारा भाई उपचार उसी हिसाब से किया जाए। और इनकेस उसको कोई भी सामान्य भी चोट लगती है तो भी उसको जाकर के एक बार चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। और फिजियोथेरेपिस्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, फिजियो का बहुत बड़ा रोल है, उससे जो एक्सरसाइजेस होती है उससे जोड़ वगैरह हमारे बहुत ही सामान्य ढंग से रहते हैं। तो इस तरह से एक हीमोफिलिक पेशेंट भी एक बहुत सामान्य जिंदगी जी सकता है। मैं श्रोताओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि अगर किसी भी पेशेंट को हीमोफीलिया है तो सबसे पहले उसको ये नहीं सोचना है कि मतलब मैं इस डिजीज से सफर कर रहा हूँ, सबसे पहले तो जीना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसके साथ जी रहा हूँ और मैं एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता हूँ और इसके लिए मुझे बस बचाव क्या क्या करने हैं उस पर ही ध्यान देना है और अपने डॉक्टर से हमेशा संपर्क बनाए रखना है, अपने फैक्टर लेवल्स को जानना है स्वयं भी कि क्या मैं सीवियरिटी के ग्रेड में तो नहीं जा रहा और मुझे कितना फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, और जो नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं और सरकार द्वारा भी चलाए जा रहे जो कार्यक्रम है

0: उनमें जरूर शामिल हो जाना है ताकि उसका जो पॉकेट भी बचा रहे, उसके खर्चे भी कम हो और उसके साथ वो आराम से रह सके। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर मैरिजेस होती हैं और फैमिली में हिस्ट्री है तो थोड़ा कॉशियस रहना है उस टाइम पे, और उस टाइम पे विशेष ध्यान देना है कि इसको हम आगे के जनरेशन में ना जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हीमोफीलिया रोग के विषय में अभी आप ये जानकारी सुन रहे थे। विशेषज्ञ थी डॉक्टर दीपा रानी। तो श्रोताओं, ये था स्वास्थ्य पत्रिका का इस माह का अंक। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर आएंगे आपके लिए फिर कुछ खास। आकांक्षा सिंह को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका, प्रसारण आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने मनोहर लाल का बांसुरी पर बजाया राग अब होगी। आपके साथ तबले पर संगत की है पंडित नंद किशोर मिश्र ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे मनोहर लाल का बांसुरी पर बजाय राग अभोगी। आपके साथ तबले पर संगत की थी पंडित नंद किशोर मिश्र ने। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के

0: व्हाट्सएप पर आधारित। और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
1: हम गवन मनाही जय बेबी नारे झूलनी, हम गवन मनाही जय बेबी
2: नारे। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
4: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
3: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
3: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई

0: living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
1: In badminton, India's Ashmita Chali has stormed into the women's single semi-final of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun in the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज न्यूज़ ऑन AIR ऐप DTA DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। संपन्न होती ये सभा कल प्रातः 5:53 पर। हम प्रातःकालीन सभा कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।